मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज। साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की तिथि 19, तदनुसार 9 मई 2026 ईस्वी। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन। आलेख एवं वाचन कुसुमाकर दुबे का।
1: हम प्रेम की चर्चा तो अक्सर करते हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए खुद कोई समय नहीं निकाल पाते। ये दिव्य जनों का सौभाग्य है कि उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मनुष्यता का लक्षण भी यही है। वेदों में कहा गया है, प्रेम भोग से नहीं बल्कि त्याग से प्राप्त होता है। वेद के अनुसार मनुष्य को प्रत्येक कर्म यज्ञ के समान करना चाहिए। दूसरों के लिए अपने स्वार्थ की आहुति देना श्रेष्ठ है। यदि हम अपने सुख को प्रमुखता देते हैं, अपने भोग को ही परम मानते हैं, तो इसका परिणाम द्वेष, दुख और अशांति के रूप में सामने आता है। दूसरी ओर त्याग का परिणाम होता है प्रेम, सुख और शांति। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहीं सुख है। ये अनुभूत सार है। विद्वानों के अनुसार प्रेम को जान लेना सब कुछ जान लेने के समान है। जो व्यक्ति प्रेम को जान लेता है, उसके लिए फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। यहाँ तक कि उसमें प्रभु को प्राप्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। प्रेम की इस उच्च अवस्था का अनुभव कुछ ऋषियों या महात्माओं ने किया है। यह ऐसा भाव है जो हमारे जन्म के साथ उत्पन्न होता है और जीवन पर्यंत हमारा साथ निभाता है। प्रेम अनमोल है। यह हमें परिपूर्णता और संतोष प्रदान करता है। जिसके हृदय में प्रेम का निवास है, उसके लिए मैं और मेरा जैसे भाव अर्थहीन हो जाते हैं। जब हमें प्रेम का अभाव होता है, तभी हमारा मैं जागृत होता है। प्रेम केवल देने और बांटने की वस्तु है। उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा उचित नहीं। त्याग से जहां मन की शुद्धि होती है, वहीं चित्त भी निर्मल होता है। प्रेम, ममता, परोपकार, सहानुभूति, श्रद्धा, ये मानवीय मूल्य भीतर के खोखलेपन को समाप्त कर देते हैं। अपने पराये की संकीर्णता खत्म हो जाती है। मनु ने कहा था, सभी जीवों में अपने को और अपने में सभी जीवों को समान रूप से देखना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु। इसे ही आचरण में लाना प्रेम का आधार है। हम किसी को अपना बनाना चाहते हैं और किसी का बनना चाहते हैं। हमारी प्रेम पाने और प्रेम देने की यह अभिलाषा प्रेम

0: को और आगे बढ़ाती है। प्रेम का अर्थ है उदारता। किसी को हमारी बात से चोट न पहुंचे, कोई अपने को अपराधी अनुभव न करे, हमेशा उदार और शिष्ट बने रहना ही प्यार है। प्रेम मन की एक सहज स्थिति है, कोमल सहृदयता है, जो हमारे आपके आचरण में अनायास ही दिखाई देने लगती है। प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग का भाव नहीं है, ये सहज सहृदयता स्वातीत भावों को जगाती है। ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जो भी आता है वो वास्तव में प्रेम से भरपूर हृदय के संपर्क में आता है, इसीलिए प्रेम के रस में सहज ही भीग जाता है। प्रेम करुणा से प्रेरित है, इसीलिए सारी दुनिया के लोग वैर विरोध त्याग कर प्रेम भाव और सुख शांति से रहना सीख ले तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। सभी धर्म प्रेम को ईश्वर के बराबर मानते हैं। मन से अहंकार, मोह और दूसरे विकार दूर हो जाने पर हम जिस सहज अवस्था को प्राप्त करते हैं वही प्रेम है। गुरुवाणी में कहा गया है, सद्गुरु की कृपा से मनुष्य देवता बन जाते हैं। इसी तरह के देव पुरुष सदा प्रभु प्रेम का रसपान करते हैं। प्रभु जी कण कण में समाये हैं, साधारण आंखें उन्हें नहीं देख पाती, लेकिन प्रभु प्रेम में रंगी आत्मा उनके दर्शन कर लेती है।
1: चिंतन। अभी आप सुन रहे थे प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा, लेखन एवं वाचन मोनी कुमारी का।
2: किसान भाई लोकन, आजुक कृषि चर्चा संग उपस्थित छी हम अनिल कुमार।
3: चर्चा में सब किसान भाई के मौनिक स्नेहपूर्वक नमस्कार। माटि में रासायनिक परीक्षणक लेल पहिल आवश्यक बात ई अछि जे खेत से माटिक सही नमूना ली। परीक्षण के लेल माटिक जे नमूना लेल गेल हुए ओ अहाँ के खेतक सब हिस्सा के प्रतिनिधित्व करित हुए, एकर ध्यान राखी। किसान भाई, जे भाग देखो में मृदाक किस्म, फसीलक आधार पर पानि निकास आ फसीलक उपज से भिन्न हुए ओ प्रत्येक भाग के निशान लगा कर प्रत्येक भाग के खेत मानी। खेतक प्रत्येक भाग से माटि परीक्षणन लेल सही नमूना चाही। किसान भाई, नमूना के लेल खेतक क्षेत्रफल कम बेसी भ सकैत अछि। सबसे पहले माटिक ऊपर के घास फूस साफ कर दी आ माटिक सतह से हल्के गहराई 0.15 सेंटीमीटर तक माटि के टुकड़ा ली। जो कुदारि या खुरपी के प्रयोग करे के अछि तब भी आकार के 15 सेंटीमीटर गहीर खद्दा बनाबी आ ऊपर से नीचा तक एक तरह से टुकड़ा काटी। एक खेत में 10 से 12 अलग अलग स्थान से माटिक टुकड़ा ली आ सबके एकटा साफ टब या कपड़ा में जमा करी। जो ठाढ़ फसिल में माटिक नमूना लेवाक हुए तब माटिक नमूना पौधक कतार के बीच वाला खाली जगह से ली। किसान भाई, माटिक नमूनाक संगे सूचना पर्ची में खेतक नंबर, नाम, नमूना लेवाक तिथि, अपन पता, नमूना के प्रयोग, मृदा के स्थानीय नाम, पटौनीक साधन, प्राकृतिक निकास आ माटिक नीचा पानिक गहराई, माटिक ढलान, फसीलक अदल बदल, खाद आ रसायनक ब्योरा जे प्रयोग कैल गेल हुए आ कोनो माटि से संबंधित जो समस्या हुए तो ई सबटा जानकारी सूचना पर्ची पर लिखती आ एकटा सूचना पर्ची माटि के अंदर आ एकटा पर्ची थैला के बाहर लगा दी। किसान भाई, कम से कम 3 से 4 साल के अंतराल पर अपन खेतक माटिक परीक्षण करेनाइ आवश्यक होइत अछि। किसान भाई के लेल माटिक जांचक सुविधा निःशुल्क उपलब्ध अछि। अपन अपन खेतक सही नमूना जिला के माटि जांच प्रयोगशाला में भेज कर परीक्षण कराबी आ रिपोर्ट प्राप्त करी। किसान भाई, ध्यान रखब जे रासायनिक खाद के पट्टी वाला जगह सब नमूना नहीं ली। जे स्थान पर पुरान बाड़, सड़क, जतक गोबरक खाद के ढेर लागल हुए या जतक गोबर के खाद देल गेल हुए।

0: ओहि जगह सँ माटिक नमूना नहि ली, एहन भाग सँ सेहो नमूना नहि लेबाक चाही जे खेत सँ अलग हुए। जँ एहन नमूना लै छी तऽ एकर नमूना अलग सँ राखबाक चाही। किसान भाई फसिल मे रासायनिक खाद के प्रयोगक सही मात्रा निर्धारित करबाक लेल माटिक जाँच बड़ आवश्यक अछि। उसर आ अम्लीय माटि के सुधार के लेल आ एकरा उपजाउ बनेबा के सही ढंग जानबा के लेल ई आवश्यक अछि। किसान भाई बाग आ गाछ लगेबा के लेल माटिक योग्यता निश्चित करबा के लेल सेहो माटिक जाँच बड़ आवश्यक अछि। एहि के संग आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो

टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली

0: ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा में आज का विषय है डायबिटीज लक्षण और सावधानियां। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नवीन कुमार।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज है क्या?
3: डायबिटीज एक जीवन शैली रोग है। हाँ। जिसमें हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है हमारे लॉन्ग टर्म में जा करके बहुत सारे अंग में हमारे खराब होते हैं। मेरा यही कहना होगा कि डायबिटीज को कम नहीं आंकना चाहिए। डायबिटीज को आप ठीक कर सकते हैं अपने खान पान से, रख रखाव से, सही तरीके से व्यायाम कर करके और समय पर चिकित्सीय सलाह ले करके, और ज़रूरत पड़े तो दवा लेने की जगह ज़रूरत है तो उसे लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको बचने का प्रयास करना चाहिए।
2: लक्षण,
3: लक्षण अगर किन्हीं भी मरीज को, अगर उनको पेशाब ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, उनका वजन गिर रहा है, उनके घाव नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको कमजोरी लग रही है, देखने में दिक्कत, अचानक से उनके चश्मे का पावर चेंज हो गया, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके घर में उनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो ऐसे लोगों को तुरंत पहले अपना जो है जांच कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज है या नहीं है।
2: जांच हो जाए तो दवाओं की ज़रूरत है या नहीं? लोग कहते हैं प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है,

0: डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं।
1: प्रताप ज्यादा हो रही है, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, उनका वजन गिर रहा है, उनके घाव नहीं ठीक हो रहे हैं, उनको कमजोरी लग रही है, देखने में दिक्कत, अचानक से उनके चश्मे का पावर चेंज हो गया, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके घर में उनके मदर फादर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह किसी को भी अगर डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों को तुरंत पहले अपना जो है जांच कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज है या नहीं है।
0: जांच हो जाए तो दवाओं की जरूरत है या नहीं? लोग कहते हैं प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है, तो प्री डायबिटिक में क्या दवाओं की कोई रोल है, या फिर डायबिटीज हो जाने के बाद दवाएं कब शुरू की जाए, इसको लेकर क्या
1: नहीं करेंगे? प्री डायबिटीज में दवा की जरूरत नहीं है। प्री डायबिटीज में आप अपने आप को लेकिन डायबिटिक समझें और उसके हिसाब से खान पान और आप एक्सरसाइज परहेज ये आपको रखना है। जहाँ तक दवा की बात है, अगर आप टाइप 1 डायबिटीज हैं तो आपको इंसुलिन लेना ही होगा, क्योंकि हमारे पास तो इंसुलिन बन नहीं रहा है वहाँ पर। टाइप 2 में आप वेट कर सकते हैं, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका HbA1c क्या है, उसके हिसाब से फिर प्लान किया जाता है क्या अभी दवा की जरूरत है या कुछ दिन वेट कर सकते हैं।
0: टाइप 1 में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, टाइप 2 में स्राव होता है, लेकिन क्या होता है?
1: डिफेक्टिव होता है, उसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है, इंसुलिन हमारे पास बनता है,

0: बट उसको काम करने के लिए नहीं दिया, कोई दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं जो उसको अपोज करते हैं कि तुम काम मत करो, तुम सेलुलर लेवल पर जो है शुगर को अंदर मत ले जाओ, ग्लूकोज को अंदर मत ले जाओ, उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस।
1: डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जब डॉक्टर सलाह देते हैं कि अब आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है और लोग चाहते हैं कि ये जो इंसुलिन लेने की जो स्थिति है उससे हम बचें, तो ये दोनों के बीच की जो बैरियर है, जो दीवार है, वो क्या है?
0: लोग जो समझते हैं कि इंसुलिन एक ख़राब चीज़ है, अगर 100 में 99 लोग तो लेना नहीं चाहते हैं, सबसे बड़ा कारण है इसका कि लोग सोचते हैं कि इंसुलिन ले लिया तो फिर आप कुछ नहीं, अब लास्ट है ये। बट लोगों को समझना चाहिए कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो इंसुलिन की अगर कोई मरीज़ हैं और दवा खा रहे हैं, 3-4 दवा खा रहे हैं और फिर भी उनका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि उनमें दवा काम नहीं कर रही है, वैसे लोगों को इंसुलिन लेना पड़ेगा। या कोई एक्यूट इमरजेंसी है, सर्जरी होनी है, आईसीयू में भर्ती हैं, इन्फेक्शन है, वैसे केसों में भी इंसुलिन देना पड़ता है। तो इंसुलिन ख़राब चीज़ नहीं है, इंसुलिन अच्छी चीज़ है, उससे जो है ज़िंदगी में बदलाव आता है और एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बहुत हद तक रोक पाते हैं। तो इसलिए इंसुलिन लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, जब ज़रूरत हो तो डॉक्टर सलाह दें तो उनको ज़रूर लेना। सावधानियाँ तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के घर में अगर मान लीजिए डायबिटीज़ है तो हेरिडिटरी फैक्टर होता है, या आप ओबीज़ हैं, सेडेंट्री लाइफ है, तो इसके लिए आपको परहेज करना चाहिए, आपके वेट को कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहीं मुझ में डायबिटीज़ तो नहीं आ रही है। तो जीवन शैली में बदलाव ला करके और दूसरों को भी प्रेरित करके अवेयरनेस फैलाइए कि आसपास में जो है डायबिटीज़ के लिए जो अवेयरनेस करिए। अभी ऐसे भी नवंबर मंथ जो हम लोग डायबिटीज़ मंथ कहते हैं और 14 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड डायबिटीज़
1: डे
0: डे
1: मना रहे
0: मनाते
1: हैं
0: हैं
1: जी।
0: जी, तो इसमें जो है यही रखा गया है कि इलाज जो है ऐसा हो कि सब तक एक्सेस हो, कम्प्रिहेंसिव हो, अफोर्डेबल हो इलाज। तो ये सारा चीज़ थीम है हम लोगों का जो हम लोग करना चाहते हैं और
1: क्या
0: देखें
1: खाएं और क्या ना खाएं, इसको लेकर रखी भी
0: ना, ना, ना,
1: बहुत
0: ऐसा
1: तरह की भ्रांति है।
0: ऐसी कहीं कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन संतुलित आहार खाएं और सिंपल शुगर जो होता है मिठाई चीनी ये सबसे बचें, क्योंकि वो
1: अच्छा,
0: आपके चीनी के स्पाइक को बहुत जल्दी बढ़ाएगा।
1: फल फ्रूट्स
0: फल एकदम फल खाना चाहिए और बहुत सारा
1: ना,
0: फल खाना चाहिए, क्योंकि फल से जो है फाइबर मिलता है और फाइबर रिक्वायरमेंट हम लोगों की जो होती है वो हम लोग बहुत कम लेते हैं।
1: डायबिटीज के लक्षणों और सावधानियों के बारे में डॉक्टर नवीन कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डायबिटीज लक्षण और सावधानियां, ये सुन रहे थे अभी आप डॉक्टर नवीन कुमार से, और इनसे बातचीत कर रहे थे संजय कुमार। श्रोताओं, वक्त हो चला है हमारे भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, तो सबसे पहले ये देशगान।

देशगान अभी आपने सुना, अब आइए सुनते हैं ये भक्ति गीत गणेश वंदना। कलाकार हैं एल नितेश।

बनी सचदेव एवं साथियों के स्वर में अभी आपने ये हनुमान भजन सुना। अगली प्रस्तुति भी हनुमान भजन।

यह स्वर था भरत कुमार एवं साथियों का। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कृष्ण भजन से ज्योति रघुवंशी के स्वर में।

0: कृष्ण भजन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर सुरेश वाडेकर एवं उत्तरा केलकर का।
1: थ्री सेवन वन।

श्री राम अयोध्या वासियों को मानव तन प्राप्त करने के सौभाग्य और फलाफल का उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नौका के समान है। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर पार न कर पाए वो महाकृतघ्न और मूर्ख होता है। हे नगरवासियों, इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के सुलभ मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, उसे सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का मार्ग अपेक्षाकृत सहज होता है, किंतु संत समागम के बिना इसकी साधना नहीं हो पाती। बड़े पुण्य अर्जित करके संतों की संगति मिलती है और पुण्य अर्जित करने का साधन है कपट त्याग कर मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना जो पूज्य हैं, जिनके चरण वंदनीय हैं। प्रजाजन के सम्मुख श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, देवाधिदेव महादेव का भजन किए बिना मनुष्य मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में न तो यज्ञ और जाप की आवश्यकता है और न ही तप और उपवास की।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 10:30 पर।

दिन के 11 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत 11:30 पर। एक बार फिर से आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन के 12:30 पर। होगा बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। देशभक्ति गीत आप सुनते हैं दिन के 1:10 पर। 1:15 पर फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। रोजगार सूचना आप सुनेंगे 2:10 पर। 2:30 पर आप फिर से आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक संगीत। हमारी दूसरी सभा के अंतर्गत आप युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5 बजे। 5:40 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। विद्यापति गीत का समय होगा 6:10। 6:25 पर आप सुन सकेंगे मैथिली संवाद हमारे पटना केंद्र से। गाम घर कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पर। शाम 7 बजे होगा किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम।

7:30 पर हमारे पटना केंद्र से। जिले की हलचल आप सुन सकेंगे 7:47 पर हमारे पटना केंद्र से। सात बजकर 52 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारा पर्यावरण आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। 9:30 पर होगा कार्यक्रम संस्कृति भारती जिसे आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुन सकेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे।

0: अस्मिन् विषये सर्वविध साहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। होर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलम् गुजरात टाइटन्स दलम् सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और

0: हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोता लोकनिक आशीषक नमस्कार,
1: और साथ ही साथ कामनेर का भी नमस्कार।
0: और कार्यक्रम के शुरुआत यही सुविचार से,
1: भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा,
0: निश्चित गप है कि अहाँ जे काज करै छी वह हिसाब से अहाँ के भविष्य बनैत अछि। आइ अहाँ नीक करब तो आगू अहाँ लेल नीक हैत, आइ अगर अहाँ अपन कार्य से भटकि गेलहुँ तो आगू अबै वाला समय जे अछि से अहाँ लेल खराब भऽ जायत। ताहि दुआरे एखनके जे वर्तमान जे अछि तकरा सुधारबाक चाही और अपन भविष्यके बनबैके लेल वर्तमान जाबत तक अहाँ अपने आप नहि सुधारिके नीक राखब ता धरि भविष्य अहाँके नहि सुधरि सकैत अछि। ई बुझिके अगर हम अहाँ काज करी तऽ अबैवला समय जे अछि हमरा अहाँके लेल सुखदायी रहत। और कार्यक्रममे सुखदायीके सङ्गे सङ्गे अगर गप करी कि आइके दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि ताहिपर किछु जानकारी प्राप्त कऽ ली।
1: जी हाँ, बिल्कुल। आज के दिन 1866 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1540 में महाराणा प्रताप वीर राजपूत शासक का जन्म हुआ। 1653 में ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष की मेहनत के बाद आज ही के दिन पूरा हुआ था। 1974 मुंबई में पहली घोड़ा गाड़ी सेवा की शुरुआत की गई। आज ही के दिन 1945 में रूस में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है।
0: तो ये हम सब जानकारी प्राप्त करते रही कि आज के दिन इतिहास में क्या महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में आगू बढ़े छी, आप अपने सबके मैथिली गीत सुनबे छी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं नमस्कार मिथिला में। और नमस्कार मिथिला में आज आपके रेडियो पर हैं खयाम नैयर और आशीष कुमार। श्रोताओं, हम समय के साथ चलते रहें और समय के साथ किसी भी काम को करते रहना ही सही है। और हम भी कोशिश करते हैं कि आकाशवाणी दरभंगा से हर एक कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएं समय के साथ। और अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि वक्त हो चुका है हालचाल का, और हालचाल प्रस्तुत करेंगे आशीष कुमार सिंह।
2: धन्यवाद कयाम। आजुक हालचालक संग हम आशीष। CISF के औपचारिक रूप से दरभंगा हवाई अड्डा के सुरक्षा संचालन के जिम्मा लऽ लेलक। प्रारंभिक तौर पर 145 कर्मी के तैनाती कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस डे पर भारतीय रेडक्रॉस समिति दरभंगा में भव्य समारोह आयोजित भेल। बच्चा सब अपन प्रस्तुति से लोक सब के मंत्रमुग्ध कऽ देलखिन। आई आयोजित होय वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर दरभंगा में लंबित ट्रैफिक चालान सब के निपटारा कर लेल प्रेक्षागृह में विशेष शिविर के आयोजन हैत। एकर सफलता के लेल बहुत रास काउंटर बनाओल गेल अछि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सब प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा के अध्यक्षता में आई शनि दिन भोरे 10 से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल जायत। एकरा लेल सबटा तैयारी पूर्ण कऽ लेल गेल अछि। प्राधिकार के सचिव सह न्यायिक अधिकारी आरती कुमारी के अनुसार अदालत के संचालन के लेल 27 बेंच के गठन कयल गेल अछि। एकरा लेल 27 न्यायिक अधिकारी सबके पीठासीन अधिकारी प्रतिनियुक्त कयल गेल छनि। एहिमे पक्षकार सबके आपसी समझौता के आधार पर न्यायालय में लंबित मामला सबके निष्पादन ऑन द स्पॉट कयल जायत। DM कौशल कुमार के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लऽ कऽ जिला स्तरीय कमिटी के बैसार भेल। DM सबटा सहायक विद्युत अभियंता कनीय विद्युत अभियंता सबके निर्देश दिलथि कि योजना के जन जन से जोड़े के लेल व्यापक रणनीति अपनाओल जाय। अधीक्षण अभियंता के सेहो निर्देश देल गेल कि नगर निगम के सबटा वार्ड मेंबर के संगे बैसार कऽ कऽ एहि योजना के बारे में विस्तार से लोक सबके अवगत कराओल जान। प्रखंड में ई योजना के बैसारक लेल कार्य योजना बनाओल जाय। योजना के अंतर्गत 78,000 अनुदान सरकार प्रदान कऽ रहल अछि। जिला में एकटा मॉडल सोलर विलेज के चयन कयल जाय। एकरा लेल एहन गाम के प्राथमिकता देल जाय जे सर्वाधिक संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट के उपयोग कऽ रहल छथि। माध्यमिक विशेष परीक्षा आ माध्यमिक कंपार्टमेंटल सैद्धांतिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका सबके मूल्यांकन 12 से 14 धरि होयत। मूल्यांकन के लेल विषयवार प्रधान परीक्षक आ सह परीक्षक सबके नियुक्ति कऽ देल गेल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में पैट 2024 के परिणाम प्रकाशित कऽ देल गेल। आई दरभंगा जिला के 2,500 से बेसी सरकारी प्रारंभिक विद्यालय सब में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी PTM आयोजित कयल जायत। संगोष्ठी के थीम अछि हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी। एकर उद्देश्य ई अछि कि बच्चा सबके अधिगम आ विकास के प्रक्रिया में विद्यालय और अभिभावक दुनू के महत्वपूर्ण योगदान छनि। एहि PTM के माध्यम से सबटा अभिभावक सबके बच्चा सबके नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करबे के संगे घर पर पढ़बे के लेल अनुकूल वातावरण

बनबे के लिए प्रेरित केनाई अछि, जैसे बच्चा सब आत्मविश्वास के संगे नियमित रूप से विद्यालय आवत और सीखे के प्रक्रिया में भागीदार रहत। एकर संगे बच्चा सब के पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर अभिभावक सब से चर्चा कैल जात और शिक्षक ई संदेश देथिन कि सबटा अभिभावक बच्चा सब के नाश्ता करा के स्कूल पठबैत। सत्तर कटैया के पंचगछिया गाम स्थित राजकीय डिग्री महाविद्यालय में नव प्राचार्य डॉक्टर इंदु कुमारी के भव्य स्वागत समारोह आयोजित कैल गेल। सेवा संवाद समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान अंतर्गत सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार के अध्यक्षता में जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र के आगंतुक आम नागरिक सब के संगे संवाद कार्यक्रम में समेकित रूप से 31 आवेदन के संदर्भ में सुनवाई कैल गेल। अपने सब सुन रहल छी हालचाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने सब सुन रहल छी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचाल। सहरसा में जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में सिटी गैस सर्विस के स्थिति के समीक्षा के लिए बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार में निर्देश देल गेल कि सबटा कमर्शियल गैस उपभोक्ता सबके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के दिस से PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य रहतन। आप पाइपलाइन से गैस के आपूर्ति कयल जायत। सहरसा में रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। सुपौल जिला के सबटा 174 ग्राम पंचायत में बाल पंचायत के गठन कयल जायत। अइ पहल से बच्चा सबके अपन समस्या के रोके के संगे हुनकर निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी के अवसर भेटतन। बाल पंचायत में 50% छात्रा सबके भागीदारी अनिवार्य रहत। हरलाखी के SDM सारंग पानी पांडे फुलहर गिरजा स्थान में चल रहल विकास कार्य के निरीक्षण कलत। ओ कार्य में तेजी आने के निर्देश दिलत और वासगीत पर्चा प्राप्त भूमिहीन परिवार सबके जमीन खाली कऽ के अपन जगह पर अवस्थित होय के लेल निर्देश दिलत। रोसरा के हिरमिया वार्ड 6 में नवा यज्ञ के शुभारंभ के लेल भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। श्रद्धालु सब बूढ़ी गंडक नदी से जल भर के यज्ञ स्थल पर यात्रा कलत। यज्ञ के दौरान धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ आ प्रवचन के आयोजन कयल जायत। समस्तीपुर दलसिंहसराय आ रोसरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के लेल सबटा तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि। एहि में कोर्ट में लंबित विद्युत वाद ऑनलाइन चलान के संगे आन मुकदमा बैंक टेलीफोन आदि वाद से संबंधित मामला सबके निपटारा हैत। सहरसा से यशवंतपुर यानी बेंगलुरु के लेल चले वाला स्पेशल ट्रेन के फेरा बढ़ा देल गेल अछि। आब ई साप्ताहिक गाड़ी जुलाई महीना धरि चलाओल जायत। एकर रूट वह रहत। वीरपुर में अगर कोनो विद्यालय के भूमि अतिक्रमित अछि तो ओकरा 3 दिन के अंदर मुक्त कराओल जाए। सबटा HM के ई निर्देश BO राम उदय महतो देलत है अपन पत्र के माध्यम से। ओ अपन पत्र जारी कऽ के अतिक्रमण हटबे में अगर कोनो समस्या अछि तकर सूचना तुरंत दै के लेल कहलत है, जैसे अतिक्रमण करे वाला व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कयल जा सकैत अछि। शिवहर में काल्हिखन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दिस से ट्रांसजेंडर सबके लेल स्वास्थ्य कैंप के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में सबटा ट्रांसजेंडर सबके स्वास्थ्य जांच कयल गेलन और संगे निःशुल्क दवाई देल गेलन। सीतामढ़ी में मस्तिष्क ज्वर के रोकथाम और उपचारक लेल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर अछि।

एकटा समीक्षा बैसारमे स्वास्थ्य अधिकारी सब ग्रामीण क्षेत्रमे जागरूकता बढ़बैके लेल नियमित चौपाल आयोजित करैके निर्देश देलथि। सहरसा कोर्ट परिसरमे आयोजित होइवला राष्ट्रीय लोक अदालतमे मामला सबके निपटाराके लेल 18 बेंचके गठन कयल गेल अछि। सिमरी बख्तियारपुरमे बनमा इटहरी प्रखंड कार्यालयमे पंचायत स्तर पर सहयोग शिविरके बैसार होयत। 19 मई से शुरू होइवला शिविरके उद्देश्य आम लोकक शिकायतके तुरंत समाधान करनाइ अछि। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सुपौल शाखाके दिशसँ विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाओल गेल। एहि मौका पर स्कूल सबके विद्यार्थी सब अपन प्रतिभा देखौलथ। गनौरामे डिग्री कॉलेजके स्थापना भेल, बच्चा सबके नामांकन शुरू भऽ गेल। वीरपुरमे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर अस्पतालमे भर्ती मरीज सबके बीच फलके वितरण कयल गेल। कार्यक्रमक अध्यक्षता SDM नीरज कुमार कयलथि। मधुबनीमे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस पर यूनाइटेड ह्यूमैनिटी विषय पर विचार गोष्ठी भेल। मधुबनीमे DM आनंद शर्मा मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजनाक अंतर्गत मत्स्य पालक सबके सहायता सामग्री बंटलथि। 4 लाभुक 3

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से, आज कई मोहल्ले में बिजली होगी बाधित। शनिवार को RCD विभाग के द्वारा लक्ष्मी सागर क्षेत्र में सर्विस वायरिंग कनेक्शन एवं पौधे की हटनी को कटिंग कार्य किया जाएगा। इस कारण 3311 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र लक्ष्मी सागर के से निकलने वाली 11 केवी सदर फीडर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगी। वहीं 11 केवी गैस गोदाम फीडर की सुरक्षा कारणों से 1 घंटे के लिए बंद रहेगी। लक्ष्मी सागर पोस्ट ऑफिस विद्यापति चौक, पासवान चौक, सदर थाना, धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया, चक्कर चौक, अंबेडकर चौक, पावन बीघा, मिथिला कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, पोसनापुर, जेपी चौक, पेप्सी एजेंसी, ज्ञान भारती, कबीरचक, इंजीनियरिंग गैस गोदाम, गांधीनगर, कटियारी एवं भोलूचक सहित आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 8:26 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:33 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:03 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202777740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर का मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
2: ये के नाम सब आगे के है, लोकल अपडेट सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए। और अखन बदलित मौसम के लगातार मौसम में परिवर्तन भ रहा है, तैमे सावधान रहे के सेहो काज है। अखन 10 तारीख धरि कहल गेल अछि कि अहाँके बरखा भ सकैत अछि और ई बरखा के कारण किछु तापमान में से उतार चढ़ाव भ रहल अछि, तैमे हम अहाँ सब बचि के रही, क्योंकि ई जे समय अछि ई समय में खास कऽ के बुजुर्ग और बच्चा के लेल बहुत खराब समय होइ छनि और जिनका सबके दमा सन बीमारी छनि तिनका सबके लेल ई बदलैत मौसम तुरंत में अहाँके मन खराब कऽ दै छनि, तऽ एहि पर ध्यान रखबाक चाही हमरा सबके।
1: जी हाँ बिल्कुल। और नमस्कार मित्रा, में हम बहुत सारी चीज़ों को समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगे और गीत संगीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, और जो चर्चा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। और कार्यक्रम संबंधी सूचना, श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारंपरिक संबंध का दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 0627222481, 9430029353। समय याद रखें रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे।
1: एक नम सब कार्यक्रम संबंधी जानकारी सुनित रही। और अगर गप करी तो अल्पसंख्यक सबके लेल प्रधानमंत्री के दिस से 15 सूत्रीय कार्यक्रम आनल गेल अछि। ई कार्यक्रम अछि एकर उद्देश्य बहुत व्यापक अछि। एकर अगर गप करी तो शिक्षा के अवसर में वृद्धि, मौजूदा और नव योजना स्वरोजगार के लिए बढ़त ऋण सहायता, और राज्य और केंद्र सरकार के नौकरी में भर्ती के माध्यम से आर्थिक गतिविधि सब में रोजगार सब में अल्पसंख्यक सबके लिए समान हिस्सेदारी सुनिश्चित केनाई अछि। बुनियादी ढांचा के विकास योजना में अल्पसंख्यक सबके लिए उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करे के संग संग हुनकर जीवन स्तर में सुधार आननाइ सेहो अछि। और सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा के रोकथाम और नियंत्रण एकर उद्देश्य में शामिल अछि।
0: जी हाँ, बिल्कुल, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में 15% लक्ष्य और परिवय अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सुनिश्चित करता है। शिक्षा की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यकों को बहुमूल्य वाले क्षेत्रों में स्कूलें खोलना, मदरसों का आधुनिकीकरण, मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से सहायता करना, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति प्रदान करना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम NMDFC के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण देना, सरकारी नौकरियों में भर्ती में समानता लाना। और बात करें कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत में आते कौन कौन से लोग हैं, तो बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के लोग इसके अंतर्गत आते हैं।
1: और अगर कहिए पूरा अगर 15 सूत्रीय कार्यक्रम के देखी तो ये अल्पसंख्यक सबके शिक्षा और कौशल विकास के लिए एकटा अहाँ के कल्याणकारी योजना है। और ये से अल्पसंख्यक मामला के मंत्रालय और कार्यक्रम के अंतर्गत भागीदार जतिक मंत्रालय सबके मिला के कार्यान्वित कैल जा रहा है। जना कि अखन अहाँ के कहिया हम चर्चा करे छलथि कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देनाइ अछि, योग्यता सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना सेहो अछि, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के दिस ऋण योजना और समग्र शिक्षा अभियान से संगे दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिस अछि, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, बैंक के दिस से प्राथमिक क्षेत्र में ऋण यानी वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पोषण अभियान यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एकरा देल गेल अछि, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एकरा देख रहल अछि, आयुष्मान भारत यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।

0: के दिशा आयुष्मान भारत के तकरो एमे राखल गेल अछि। और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी सब किछ के समेट के यानी पूरा दृष्टिकोण एहिपर देल गेल अछि कि सब आदमी मिल कऽ के सबटा घटक सबके मिला कऽ के एकटा मुख्य धारा में शामिल कयल जाए।
1: जी हाँ बिल्कुल, और श्रोताओं हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में बहुत सारी चीज़ों को हमें समेट कर रखने की ज़रूरत पड़ती है। खुद के साथ साथ फैमिली परिवार के लोगों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। यूँ तो हर मौसम में खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये चीज़ होती है कि जल की समस्या हो जाती है गर्मी के मौसम में, और वहाँ पर हम सबको थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बदलाव लाने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी गतिविधियों से हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम अपने आप को आगे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हम इन सब चीज़ों का पूरा पूरा ख्याल रखें। जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौसम में, कि हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं पानी हमारे लिए कितना आवश्यक है, जिसके बिना जीवित प्राणियों का जीना बिल्कुल नामुमकिन सा है। श्रोताओं, मीठे पानी का प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद होने से बचाना, उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करना ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी उपलब्ध रहे, या अनिवार्य रूप से पानी की आवश्यक उपयोग को कम करने और जल संरक्षण की सुरक्षा व प्रबंध करने की यह एक प्रक्रिया है।
0: निश्चित तौर पर जल ही जीवन है, ई हम अहाँ किछु बच्चा से सुनैत आबि रहल छी। पृथ्वी के 71% भाग अहाँ के जल से घिरल अछि, लेकिन अगर हम सब पीबै के पानि के गप करी, यानी कि जेना एखन कल्याण कहैत रही मीठा पानी के गप करी, तो मात्र 3% अछि, और ओहो मे 2% जे से बर्फ के रूप में जमा अछि, यानी कि मानव के उपयोगक लेल जे अछि मात्र 1% जल उपलब्ध अछि। और बिहार जेहन कृषि प्रधान राज्य में जतय के अर्थव्यवस्था और संस्कृति नदी तालाब से जुड़ल अछि, जल संकट एकटा विकराल रूप लऽ रहल अछि। दरभंगा जकरा कि हम अहाँ कखनो तालाब के शहर कहैत रही, आइ भूजल स्तर एतय 200 फीट से नीचा जा चुकल अछि। एहन में जल संरक्षण विकल्पीयता ने एकटा अनिवार्य रूप में बनि चुकल अछि कि हमरा अहाँ के कोनो कीमत पर जल संकट के रोकबाक चाही। एकर बहुत रास कारण भऽ सकै छै, जेना कि एखन जनसंख्या बढ़ि रहल अछि, और जखने जनसंख्या बढ़ि रहल अछि कि अहाँके ओकरा लेल अंधाधुंध दोहन भऽ रहल अछि, अहाँके लगातार अहाँके 24 घंटा के मोटर चलैत अछि, बढ़ैत आबादी के लेल पानि के मांग बढ़ि रहल अछि, और प्रदूषण सेहो लगातार बढ़ि रहल अछि, जाहिसँ कि कारखाना सबके गन्दा पानि नदी तालाब के से खराब बना रहल अछि। और सबसे पैघ जे कारण अछि, हम अहाँ जे परम्परागत जे स्रोत अछि तकर अपेक्षा कऽ रहल छी। हमर अहाँ एतय पानिमे पोखरि कुआँ बहुत समयसँ आदि समयसँ जलके संग्रह करैत रहल अछि, और आइ ओ सब अपने अतिक्रमण और गन्दगीके शिकार भऽ चुकल अछि।
1: जी हाँ बिल्कुल, और ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन छोटे बदलावों से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम अपने आप में थोड़ा सा ख्याल रखें, केयर करें, तो हमें देखकर हो सकता है आज नहीं कल नहीं लेकिन हफ्ता 10 दिन महीने में कोई तो होगा ज़रूर जो हम जैसा कर रहे हैं वैसा करने की कोशिश करेगा, और छोटे छोटे बदलाव के साथ हम अपने समाज को बदल सकते हैं। जैसे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के में भूगर्भ ग्राउंड वाटर तक पहुंचाया, जिससे भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। सरकार ने भी तरह तरह की योजनाएं लागू की है मनरेगा के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, कि जो भी पानी है उसको हम पोखर या तालाब को खनकर उसमें पानी को जमा करें, जिसके लिए सरकार ने कई योजना तैयार की जिसमें आपको मुआवजा उसका लाभ भी आपको दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों में ये धड़ल्ले से ये चीज़ चल रहा है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ुद भी सरकार जब तक किसी भी योजना को सफल नहीं बना पाएगी, जब तक हम जनता उसको ग्राउंड लेवल पर नहीं करेंगे या खुद में वो बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक वो नहीं हो सकता है। आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना है। मोटर, जैसा कि आशीष ने कहा कि मोटर यूं ही सारा दिन चलता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बिहार में वो बिजली के का जो यूनिट है वो जो कम हो गया है, उस वजह से थोड़ा और भी बढ़ता चला गया है। ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि हर छोटी छोटी

0: चीज़ के लिए हम मोटर ही शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, और घंटों भर से ही पानी बर्बाद होता रहता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है
1: निश्चित तौर पर। और अगर किछ हम सब रिपोर्ट देखी, केंद्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट बतबैत अछि कि बिहार के 12 जिला जे डार्क जोन में आबि चुकल अछि, जत भूजल निकाले के जे सीमा है से समाप्त भ चुकल अछि। और इएह स्थिति रहल त 2030 धरि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जेहन जिला में पिए के पानी 500 फीट नीचा से चल जाए। आप सोच सकै छी एखन 200 फीट पर ही हाल अछि, लोक के पानी नहीं भेट रहल छन, तकर बाद कृषि ठप भ जाए, लोक के पिए ले पानी नहीं भेटतन, पानी ले हाहाकार मच जाए। और एकरा लेल एखन हमरा अहाँ के निश्चित तौर पर ये पानी बचेबाक चाहिए। अहाँ के खास कर के टेप चलत रहे, नल जे चलत रहे, ताहि से पानी टपकत नहीं रहे। हम अहाँ ब्रश करे छी, सेविंग करे छी, बर्तन धोए के समय किछु पानी चलत रहिए, हम सब अहाँ के लागल रहे छी, पानी के बर्बादी करत रहे छी। तो ओहि काल में जतबे काज रहे ओतबे पानी चलाबी, पानी रोक के बंद कऽ के राखी। और खास कऽ के एखन आरो के चलन बढ़ि गेल अछि, आरो मे जतेक पानि हमरा अहाँके शुद्ध कऽ के दैए ओहिसँ बेसी पानि ओ बर्बाद करैत अछि और ओ पानि बहि जाइत अछि। ओ पानिके चाही तऽ अहाँ किछु निश्चित तौर पर घरके आन काजमे ओ पानिके उपयोग करी, ओकरा स्टोर करी, ओकरासँ अहाँके गाछ वृक्ष सबमे ओकरा उपयोग करबाक चाही, गाड़ी ताड़ी धोबाक हुए या फिर एहन तरहके पानि ओ बर्बाद नहि हुए, ओ पानिके आन काजमे उपयोग करी। और अगर खास कऽ के जखन एखन गामके एखन हमसब चर्चा करैत रही तऽ पर ड्रॉप मोर क्रॉप जे अभियानके अंतर्गत हमसब ड्रिप और स्प्रिंकलिंग सिंचाई अपना सकै छी, एहिसँ 50% पानिके बचत हैत। खेत सबमे जे पहिले हमर सबके मेड़ बनल रहै छल, तऽ आब ओ मेड़के कनि अहाँके किछु सुचारू राखी, जाहिसँ खेतके पानि खेतमे रुकल रहि जा सकै। और धानके SRI विधिसँ खेती करब तऽ 40% कम पानि लागत।
0: जी बिल्कुल, यह पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाए रखने और पारिस्थितिक को संतुलित के लिए आवश्यक है। पानी की बढ़ती मांग और भू सूखे जैसे परिस्थितियों को निपटने के लिए यह ज़रूरी है। श्रोताओं, हम अपने जीवन में छोटी छोटी बदलाव और बचाव करके पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। जल संरक्षण जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
1: निश्चित,
0: और इन सब जिम्मेदारियों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम श्रोताओं को इंटरटेनमेंट भी देते रहें और उनके मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखें। तो देर न करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक और प्यारा सा गाना।

0: आओर आब समयके सङ्ग सङ्ग हमहूँसभ चलै छी आओर गप करी तऽ समसामयिक घटनाके तऽ चतुर्थ चरणमे शिक्षक सभके बहालीके लेल रिक्ति जल्दी देल जाएत, शिक्षा मंत्री ई गप अहाँके कहलथि हँ बिहारमे। आओर नाबालिग सभके आब सिमके लेल माँ बापके आईडी लगतनि। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालके सत्ता सम्हालतथि आओर के छै तमिलनाडुमे विजयके राज तिलकके सेहो रास्ता साफ भऽ गेल अछि, हुनका अहाँके समर्थन भेट गेलनि हँ। पर्यटन विभाग हर साल 4 लाख रोजगार देत, ई अहाँके जानकारी छल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। भारत कनाडा CIPA वार्ता के दूसरे दौर पर दिल्ली में समापन। भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण दिल्ली में हुआ आयोजन। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराया। आज का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से का गुजरात टाइटंस से शाम 7:30 बजे जयपुर में खेला जाएगा।
0: और चलैत चलैत अगर गप करी तो ऋग्वेद में कहल गेल अछि आपो ही स्था मयो भुव, अर्थात जल सुख के आधार अछि। अपन हमर अहाँके पूर्वज सब बूंद बूंद बचा के अहाँके पोखरि कुआँ बावड़ी बनेलथि। आई तकनीक हमरा अहाँ लगै अछि, मुदा इच्छा शक्ति के

0: अछि तऽ जल संरक्षण एक दिन के काज नहि अछि, ई जीवन शैली अपनाकऽ एकरा रोज रोज बचेला पर हमसब अहाँके जल के संरक्षण कऽ सकै छी आओर अबैवला भविष्य के बचा सकै छी। तऽ इएह के संगे आजुक कार्यक्रम से हमरा आशीष के
1: आओर कयाम नैयर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार मिथिला।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल हमालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। घर घर के वाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के वाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़वा लेल हम आबि रहल छी एक क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
3: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है।

0: शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता।

0: से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। शुभेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पदीर असेंबली इंतखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आर एन रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुविंदो अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदनवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बरदारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया।

0: जनरल एनएस राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। विदारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले एहकामात तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी 4 दहाइयों से ज़्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाज़ों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही है। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैनुल अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी जब मंदिर में अज़ीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज़ पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाज़े को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवज़ा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज़रानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज़ को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फ़दाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फ़दाई निज़ाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज़ में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज़ 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाक़यात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियाँ भी शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामे निगार से।
2: अमेरिका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके।

0: रजिस्ट्रेशन शुरू। अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 मई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें bceceboard.bihar.gov.in। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों से अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और संबंधित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को कहा है। पटना स्थित सचिवालय में मंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री चौधरी ने यह निर्देश दिए। बैठक में विकसित भारत के संकल्प के साथ समृद्ध बिहार के सपने को साकार करने के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित अन्य विभागों के मंत्री उपस्थित थे। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आज पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन करेंगे। यहां बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रमवाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई होगी। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य के सभी जिलों में आयोजित लोक अदालत में ट्रैफिक चालान संबंधित मामलों का

0: निष्पादन किया जाएगा।
1: इसमें वैसे ई चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित है उनके निपटान के लिए लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भुगतान की प्रक्रिया है वह भी सरल की गई है, इसमें भुगतान नगद या यूपीआई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा सकता है। सभी जिलों में जो डीएसपी ट्रैफिक है उनको यह निर्देशित किया गया है कि आप लोक अदालत में अपने जिले अंतर्गत जो हो रहे वहां पर आप उपस्थित रहें अनिवार्य रूप से।
0: ट्रैफिक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए पटना सहित विभिन्न जिलों में विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में इन मामलों की सुनवाई ज्ञान भवन में की जाएगी। यहां मामलों के निष्पादन के लिए 25 बेंच का गठन किया गया है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना की स्थिति में प्रारंभिक जांच के बाद 24 घंटे के भीतर वाहन मालिकों को उनका वाहन सौंप दिया जाएगा। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने बताया कि राज्य के किसी भी थाने में दुर्घटनाग्रस्त वाहन 24 घंटे के दौरान नहीं मिलने की स्थिति में मोबाइल नंबर 9031829356 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे 2174 शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया है। विभाग के अनुसार 18 मई को इन शिक्षकों की काउंसिलिंग होगी। अगर किसी कारण से निर्धारित तिथि को काउंसिलिंग नहीं हो पाती है तो अगले दिन काउंसिलिंग की जाएगी। गौरतलब है कि विभाग के अनुसार बीपीएससी द्वारा परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए इस वर्ष फरवरी महीने में 6 से 11 तारीख तक तिथि निर्धारित की गई थी। विभिन्न कारण से इन शिक्षकों की काउंसिलिंग नहीं हो सकी थी। पटना स्थित आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से जारी नर्सिंग छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है। कॉलेज के उपनिदेशक सह प्रवक्ता डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पर छात्राओं ने आंदोलन समाप्त कर दिया। वहीं इस घटना के बाद कॉलेज की उप प्रधानाचार्य रूपाश्री दास गुप्ता को अकादमिक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी से हटा लिया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि छात्राओं के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पेरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए मौजूदा पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्तियों के लिए पेरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कोलकाता में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद श्री अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल के टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहरसा जिले में मध्याह्न भोजन खाने से 20 स्कूली बच्चों के बीमार होने की खबर पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इस संबंध में शिक्षा विभाग को पीएम पोषण योजना के समुचित अनुश्रवण और निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने बीमार स्कूली बच्चों का समुचित इलाज कराने का भी निर्देश दिया है। शेष

0: समाचार एक अंतराल के बाद।
1: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में आंधी बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है।
5: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना, सारण, शेखपुरा एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, सारण, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि तेज आंधी के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके चलते आवागमन और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। राजधानी पटना में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात घंटों ठप हो गया। पटना जू में भी कई पेड़ गिर गए। प्रशासन ने गिरे पेड़ों को हटाने के लिए आज पटना जू को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने पेड़ गिरने या बिजली के तार टूटने की तत्काल सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9470001389 जारी किया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, पानी और वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पटना और वैशाली में 2-2 तथा आरा, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गृह विभाग ने छापेमारी में असहयोग के आरोप में कटिहार सदर 2 के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात हैं। इधर पश्चिम चंपारण के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने गौनाहा थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार को कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। नवादा जिले की साइबर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के कोनिया मोहल्ले से एक साइबर ठग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ठग के खाते से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जब्त की गई है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र

0: अंतर्गत कुर्सा कांटा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1028 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पटना के कृषि अनुसंधान परिसर में सतत कृषि हेतु संतुलित एवं पर्यावरण अनुकूल पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मृदा परीक्षण आधारित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक खाद अपनाने की जानकारी दी गई। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान स्थित कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम आज से स्वीडन में आयोजित पैरा स्विम ओपन फाल्कनबर्ग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में शामिल हो रहे हैं। मधुबनी जिले के विस्पी प्रखंड के रथौस गांव निवासी शम्स 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले और 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ी जापान में होने वाले आगामी एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 11 मई से आयोजित की जाने वाली अंडर 20 राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन पर ताजपोशी शीर्षक से लिखा है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता। दैनिक जागरण लिखता है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर आतंकी कैमरा, जांच में जुटी एटीएस और एसटीएफ। प्रभात खबर का शीर्षक है, ठगी साइट तक पहुंचाने को सरकारी पोर्टलों का सहारा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवनियुक्त मंत्रियों से कहा, अपने अपने विभागों में नई योजनाओं को लागू करने और तय लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाएं। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज किया जा रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, ट्रैफिक चालान समेत विभिन्न मामलों का होगा निपटारा। शिक्षा विभाग ने तीसरे और चौथे चरण की सक्षमता परीक्षा में काउंसिलिंग से छूटे शिक्षकों को एक बार फिर काउंसिलिंग का मौका दिया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। कल आंधी और वज्रपात से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में प्रदेश में 7 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: ए एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाश।

0: 20. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है.
2: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ. प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना. रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर.

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा
4: नमस्कार मिथिला सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा
0: साहित्य संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: तब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
5: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है। अगला कार्यक्रम हमारे पटना केंद्र से।

0: कौन है?
1: ये दरवाजा खोलिए, जरूरी काम है।
0: ठहरो, खोलती हूँ।
2: क्या बात है बेटा?
1: ये मकान खुर्शीदा बेगम का है ना?
2: हाँ हाँ, मैं ही खुर्शीदा बेगम हूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ।
1: ये सुना है आपके यहाँ कोई कमरा खाली है, जिसे आप किराए पे लगाना चाहती हैं। मैं इसी कमरे के लिए आया हूँ।
2: हाँ, कमरा तो खाली है, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में बताया किसने?
1: जी, मेरा नाम जावेद अख्तर है। मैं PWD में सर्विस करता हूँ और मेरा मकान रांची है। मैं रांची से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। दरअसल मेरे दफ्तर के एक स्टाफ अहमद ने मुझे आपका नाम और इस मकान का पता बताया।
2: लेकिन मैं तो किसी अहमद को नहीं जानती।
1: लेकिन वो तो आपको अच्छी तरह जानता है।
2: देखो बेटा, आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है। आंख बंद करके किसी पे भरोसा कर लेना हिमाकत है। और फिर मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे पास एक जवान लड़की है। मैं किसी अनजान आदमी को मकान कैसे दे सकती हूँ?
1: ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा।
2: हर जरूरतमंद जरूरत पड़ने पर यही कहता है। अच्छा ये बताओ कि तनखा रहोगे या फैमिली के साथ?
1: जी तनखा रहूंगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई।
2: तब तो और मुश्किल है।
1: ऐसा ना करिए, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ।
2: मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानकारी हासिल न कर लूँ, ये कमरा किराए पर नहीं दे सकती।
1: वैसे तो मेरे जानने वाले बाहर के लोग इस शहर में मौजूद हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सभी को जानती हूँ।
2: वो तो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि रांची में तुम्हारा मकान कहाँ है?
1: जी डोरंडा में।
2: डोरंडा? उसी मोहल्ले में तो मेरी छोटी बहन रशीदा भी रहती है।
1: रशीदा खाला आपकी छोटी बहन है?
2: क्या तुम उसे जानते हो?
1: अच्छी तरह। उनके शोहर का नाम अली हैदर है और उनके बड़े लड़के का नाम फिरोज और छोटे का आतिफ। उनका मकान तो मेरे मकान के बगल में है। हम लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपनों जैसे।
2: रशीदा के बगल में तो आमना बहन का मकान है।
1: वो मेरी माँ है।
2: क्या तुम आमना बहन के बेटे हो?
1: जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अब तो मकान के लिए किसी जमानतदार की जरूरत नहीं है।
2: नहीं बेटा, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, वो बहुत नेक और मिलनसार औरत है। बानो, ए बेटी बानो।

0: क्या तुम आमना बहन के बेटे हो?
1: जी हाँ, उन्हीं का बेटा हूँ। अब तो मकान के लिए किसी जमानतदार की जरूरत नहीं।
0: नहीं बेटा, नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ से मैं कई बार मिल चुकी हूँ, वो बहुत नेक और मिलनसार औरत है। बानो, ए बेटी बानो,
2: क्या है?
0: अब बगल वाले कमरे का दरवाजा जरा खोल दे बेटी।
2: ठीक है, खोल देती हूँ। दरवाजा खोल दिया है अम्मी।
0: आओ बेटा आओ, कमरा देख ले।
1: कमरा तो ठीक है, कुशादा कुशादा भी और हवादार भी। इसका किराया कितना होगा?
0: 150 रुपए। हाँ।
1: ये लीजिए 150 रुपए। कल सवेरे में अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। आप जरा कमरे की सफाई करवा दीजिएगा।
0: तुम इसकी फिक्र ना करो, सफाई हो जाएगी। अलबत्ता ये बता दो कि इस चौकी को इसी कमरे में रहने दूं या इसे निकाल दूं?
1: अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो फिर रहने दीजिए, मेरे काम आ जाएगी।
0: फिलहाल मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं।
1: तो फिर रहने दीजिए, फिर तो फिर मेरे लिए छोड़ दीजिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ।
0: अरे बेटा, बगैर चाय पिए कैसे चले जाओगे? बानो बेटी, जरा चाय तो बनाना।
1: हाँ हाँ, मुखा तकल्लुफ कर रही है।
0: अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है बेटा, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब भी आमना बहन से मिलने उनके घर गई, बगैर कुछ खिलाए पिलाए मुझे आने ही नहीं दिया। बहुत अखलाकमंद औरत है तुम्हारी माँ।
1: जी इंसान को खुश अखलाक तो होना ही चाहिए।
3: चाय तैयार हो गई अम्मी, आगे ले जाइए।
4: अभी आए बेटी। ये लो बेटा चाय।
1: लगता है कि बानो पर्दा का बहुत ख्याल रखती, वरना चाय लाकर वो खुद भी दे सकती थी।
4: हाँ बेटा, वो आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत ही संजीदा और तन्हाई पसंद, न कहीं आना न कहीं जाना, बस दिन भर कमरे में बंद किताबें पढ़ते रहना ही उसका मशगला है।
1: ये तो बहुत अच्छी आदत है, वो अपना वक्त फजूल नहीं बर्बाद करती। अच्छा चाय मैंने पी ली, अब इजाजत दीजिए।
4: ठीक है बेटा, जाओ।

0: भैया जरा रिक्शा वाले, ये रिक्शा दाएं गली में मोड़ लो। हाँ बस अब जरा यहीं रोक दो, ठीक है इसी जगह। अब जरा ये सामान उतार कर उस चबूतरे पे रख दो। ये लो पैसे।
1: कौन है?
0: जी मैं हूँ अख्तर, आपका नया किराएदार।
1: अच्छा आप हैं, जरा ठहरिए मैं आपके कमरे का दरवाजा खोल देती हूँ। आपके कमरे का दरवाजा खोल दिया है?
0: जी ठीक है। हफ्तों की परेशानियों के बाद आज सुकून मेहसर आया। वाकई बड़े शहरों में मकान तलाश करना जुए शीर लाने से कम नहीं।
1: अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा।
0: जी फिलहाल तो ऐसी कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

किताब ले आऊं। हाँ, यही बेहतर होगा, पढ़ कर लौटा दूंगी। ये किताब सादत हसन मंटू की तो पढ़ चुकी हूँ, ये कृष्ण चंद्र की ये भी पढ़ चुकी हूँ, ये रजिया भट्ट और ये अली मसरूर और ये जावेद अख्तर, किताब का नाम एक लम्हे की जिंदगी, ये किताब मैंने अब तक नहीं पढ़ी। अरे ये तस्वीर तो अख्तर की है। गोया ये हजरत भी अफसाना निगा रहे हैं, जब भी बातें बहुत सलीके से करते हैं। आज इस किताब को पढ़ूंगी, जरा मैं भी तो देखूं इनकी कहानियों में क्या है।

ये पहाड़ जैसा दिन कैसे गुजरेगा। अरे हाँ, याद आया, अख्तर के कमरे में तो किताबों का अंबार है, क्यों न वहीं से

0: अरे ये किताब रेक से उतरकर बिस्तर पर कैसे चली आई?
1: ये किताब खुद से नहीं उतरी थी, इसे मैंने उतारी थी।
0: आप बरामदे में मौजूद हैं क्या?
1: आपकी किताब मैं पढ़ने के लिए लाई थी, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप एक अफसाना नगार भी हैं।
0: जी शुक्रिया। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगी?
1: बाज कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, और बाज निहायत कमजोर जिसका दिल और दिमाग पर कोई रद्दअमल नहीं।
0: जैसे
1: अंधेरा ही अंधेरा, तन्हाई का कर्म, ये सत्य और मनगढ़ंत कहानियाँ जिनका हकीकी जिंदगी से कोई लगाव नहीं, लेकिन एक लम्हे की जिंदगी और एहसास, ये दोनों कहानियाँ जिंदगी के बहुत करीब हैं और काफी म्यारी भी। ये हकीकत है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्हें एक लम्हे की जिंदगी में असर नहीं और एहसास इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एहसास जिंदगी का एक ऐसा सरमाया है जो इंसान को कभी खुशफहमी की दीवार पर खड़ा कर देता है और कभी मायूसी के सलीब पर लटका देता है। आपकी कहानी एहसास का ये कोटेशन मुझे बेहद पसंद आया।
0: वाकई आप बहुत ज़हीन हैं और कहानियों पर आपके गिरफ्त सख्त है। जी चाहता है कि आपसे कहानियों पर खूब खूब बातें करूं, लेकिन ये सोचकर उदास हो जाता हूं कि हमारे दरमियान दीवार का एक पर्दा है। और बातें करने का मजा तो तभी आता है जब दो बातें करने वाले आमने सामने मौजूद हों। और सच पूछे तो अब आपको देखने के लिए तबीयत भी मचलने लगी है।
1: ये तो आपका बड़कपन है, मुझ जैसी हकीर को इस काबिल समझ रहे हैं, वरना मैं इस लायक नहीं कि आपके रूबरू होकर बातें कर सकूं।
0: फिर वही इनकसारी?
1: ये इनकसारी नहीं, हकीकत है।
0: आप जा रही हैं क्या?
1: जी हाँ, कमरे में जा रही हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया।

आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बानो को अपने करीब बैठा कर खूब खूब बातें करूं? मोहब्बत भरी बातें। बानो, बानो इस वक्त गहरी नींद में सो रही होंगी और मैं उनके यादों के चिराग जलाए बैठा हूं। आखिर मैं इसके लिए इस कदर बेचैन क्यों हो रहा हूं? क्यों मुझे सोते जागते इसी का ख्याल आ रहा है? क्यों? अरे, ये आवाज तो बानो की है। क्या बानो भी अब तक जाग रही है? क्या वो भी मेरी तरह बेचैन है और गजल गाकर खुद को बहलाने की कोशिश कर रही है, या फिर अपनी आवाज के जरिए अपनी मोहब्बत का पैगाम भेज रही है? बानो, बानो, मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारे जुल्फों का असीर हो चुका हूँ। तुम काश तुम भी मेरे जज्बात की जुबान समझ लेती। बानो, खूब गाओ बानो। तुम्हारी कुर्बत अगर मुझे नसीब है तो कम से कम तुम्हारी आवाज तो मेरे करीब रहे।

0: अख्तर, गाने की आवाज कहाँ से आ रही है?
1: ये बानो की आवाज है।
0: ये बानो कौन है?
1: इस घर की मालकन।
0: अच्छा कर, इसकी आवाज में बला का सूर है। ऐसा लगता है कि वो गाने के फन से अच्छी तरह वाकिफ है।
1: सिर्फ गाने के फन से ही नहीं, वो अदब लतीफ के भी बहुत सारे फनून से वाकिफ है।
0: अच्छा, ये बात है।
1: हाँ, तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि मुंशी प्रेमचंद से लेकर अहदे हाजिर तक की कहानियों पर इसकी गहरी नजर है। और सिर्फ कहानियों पर ही नहीं, शायरी, सियासत और मौसीकी तक पर वो मुझसे बातें करती हैं।
0: अच्छा, ये तो वाकई कमाल की बात है।
1: ये तो इसकी ज़हानत और मालूमात की बात रही हो। बहैसियत इंसान भी वो बहुत अच्छी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। रोजाना कुछ ना कुछ

0: खाने पीने की चीजें अपनी माँ के जरिए भिजवाती रहती, और इसकी माँ भी बड़ी मुखलिस और मिलनसार औरत है।
1: लगता है मियाँ कि वो तुम पर आशिक हो गई है।
0: इसका अंदाजा तो मुझे अब तक नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं इस पर आशिक जरूर हो गया हूँ।
1: तुम और इश्क, तुमने तो कहा था कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा,
0: लेकिन अब इरादा बदल दिया है। पानो जैसी लड़की लाखों के बाद एक पैदा होती है।
1: बहुत ही खूबसूरत है क्या?
0: मैंने उसे अब तक देखा नहीं, लेकिन हाँ वो यकीन खूबसूरत होगी।
1: कमाल की बात है, उसे देखा भी नहीं और उस पर आशिक भी हो गए।
0: मोहब्बत इसी को तो कहते हैं।
1: तो फिर तुम उससे बातें कैसे करते हो?
0: मैं कमरे के अंदर रहता हूँ और वो बरामदे में।
1: और उसकी माँ?
0: अगर वो मौजूद भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी गुफ्तगू काफी मुहज्जब हुआ करती है।
1: लेकिन वो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती?
0: यार वो बहुत शर्मीली और उसकी निगाहों में पर्दे की खास अहमियत है, और अगर वो किसी जरूरत के तहत अपनी माँ के साथ बाहर भी जाती है तो चेहरे पे नकाब रख कर।
1: गोया ये लड़की तुम्हें बेहद पसंद है।
0: हाँ यू बेहद पसंद है।
1: क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है?
0: पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा है वो भी मुझे चाहती है। सोच रहा हूँ कि किसी दिन इस सिलसिले में उनसे बातें करूँ।
1: हाँ हाँ जरूर करो, और अब मुझे इजाजत दो, बहुत देर होगी, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।
0: अच्छा खुदा हाफिज।
2: आपकी चाय बरामदे में तिपाई पर रख दिया है, उठा लीजिए।
0: मेरी चाय?
2: जी हाँ आपकी, चूँकि अम्मा घर में मौजूद नहीं है इसलिए तिपाई पर रख कर आपको खबर कर
0: दी। जी शुक्रिया, आप जरा बरामदे में आने की जहमत गवारा करेंगी?
2: कोई खास बात है क्या?
0: जी हाँ बहुत ही खास बात।
2: आती हूँ, लेकिन पहले आप चाय तो उठाइए।
0: मैं चाय पी रहा हूँ, आप आ सकती हैं।
2: लीजिए मैं आ गई, कहिए क्या बात है।
0: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको मुझसे इतनी अपनाइयत क्यों है?
2: ये भी कोई पूछने की बात है?
0: ये सवाल बहुत अहम है, जवाब दीजिए।
2: इसलिए कि आप परदेसी हैं और यहाँ हमारे अलावा आपका कोई नहीं।
0: गोया आप परदेसी समझकर मुझ पर तरस खाती हैं।
2: खुदा के वास्ते ऐसा न कहिए।
0: तो फिर बताइए कि इस अपनाइयत की क्या वजह है?
2: आप एक फनकार होकर गैर जरूरी सवाल क्यों कर रहे हैं?
0: ये गैर जरूरी सवाल नहीं है बानो, इस सवाल का मेरी जिंदगी से बड़ा गहरा लगाव है। और एक बात पूछूं बानो?
2: क्या?
0: मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: मोहब्बत एक पाक जज्बा है, ये वो जज्बा है जो इंसान को एक दूसरे से करीब कर देता है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत खुदा है, मोहब्बत इंसानियत है, और मोहब्बत।
0: आपने कभी किसी से मोहब्बत की है?
2: मैं खुद को इस लायक नहीं समझती।
0: फिर वही इनके सारे?
2: मैं सच कह रही हूँ अख्तर साहब।
0: सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं जब से इस मकान में आया हूँ आपने मेरी रातों की नींद चुरा ली है, मेरा सब्र और सुकून छीन लिया है। बानो बानो मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपके बगैर एक पल भी जी नहीं सकूंगा। खुदा के वास्ते मेरी मोहब्बत कबूल कीजिए और मुझे अपनी घनेरी जुल्फों के छांव में पना दीजिए, वरना
2: आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। आप यही कहना चाहते हैं? अख्तर साहब जिंदगी बड़ी लजीज शय है और लज्जत इंसान की कमजोरी, और शायद यही वजह है कि जिंदगी चाहे जैसे भी हो इंसान इसे झेलता रहता है। आप इस कदर जज्बाती न बनिए।
0: मैं जज्बात के रौ में नहीं बह रहा हूँ बानो, मैंने तो अपने दिल की बात की है, दिल की। मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता दे रहा हूँ, आप मेरे करीब आ जाइए, मेरे करीब।
2: आपने क्या किया अख्तर साहब, क्या किया? आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए।
0: बानो भाग गई, इसने मेरे सवाल का तशफी बहुत जवाब नहीं दिया। मेरी बातें उसे पसंद नहीं आई, क्या वो मेरी मोहब्बत, क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या शर्म हयान उसे भाग जाने पर मजबूर कर दिया।
2: बानो आपकी खिदमत में हाजिर है,

0: मुझे देखते ही आपके होश हवास उड़ गए, आपकी जबान गुंग हो गई। मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसीलिए आपके बार बार इसरार पर भी मैं इनकार करती रही। लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मुझको मजबूर कर दिया और मुझे आपके ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ अख्तर साहब, अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी।
1: खुदाया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बानो को मैंने दिलो जान से चाहा था, इसकी घनेरी जुल्फों की छाओं में अपनी जिंदगी गुजार देने का फैसला किया था, लेकिन मैं इसकी कुर्बत एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक लम्हे के लिए भी नहीं।
2: क्या बात है अख्तर, आज तुम बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हो।
1: मैं उदास परेशान नहीं, मैं परेशान कहां हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं।
2: तुम हंसने की लायक एक्टिंग कर लो, लेकिन अपनी उदासी छुपा नहीं सके, आखिर बात क्या है?
1: बात तो कुछ नहीं है अय्यूब, तुम खामखा परेशान हो रहे हो।
2: परेशान मैं नहीं हो रहा हूँ, परेशान तुम लग रहे हो। लगता है कि बानो ने तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं की।
1: अरे वो तो हाँ, वो तो मुझे टूट कर चाहती है। अगर मैं रात को दिन कहूँ तो दिन, और दिन को रात कहूँ तो रात।
2: तो क्या फिर वो खूबसूरत नहीं है?
1: खूबसूरत? हाँ खूबसूरत नहीं अय्यूब, वो बहुत खूबसूरत है वो।
2: यानी चांद से भी ज्यादा?
1: चांद में क्या हुस्न है, तुमने पहाड़ों को हुस्न देखा है, तुमने झरनों का हुस्न देखा है, तुमने समुन्द्र के साहिल का हुस्न देखा है, मेरी बानो का हुस्न भी कुछ ऐसा ही अय्यूब। हाँ कुछ ऐसा ही।
2: लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, चपी उठ पटांग की बातें कर रहे हो।
1: अगर मेरी बातें तुम्हें पसंद नहीं तो मैं जाता हूँ, अभी मैं पागल नहीं हुआ हूँ अय्यूब, अभी मैं पागल नहीं हुआ।
2: अख्तर सुनो तो सही। अख्तर चला गया, लगता है कि उसका दिमागी तवादन कुछ ठीक नहीं। मुझे उसके घर जाना चाहिए, मुझे पता लगाना चाहिए आखिर बात क्या है।

0: मैं बालों को भूल जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाऊंगा।
1: तुम उसे नहीं भूल सकोगे, कभी नहीं भूल सकोगे।
0: नहीं, मैं उसे भूल जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाऊंगा, उसे कभी याद नहीं करूंगा, कभी नहीं।
1: ये कहकर तुम खुद को बहलाने की कोशिश कर रहे हो,
0: ये गलत है,
1: यही हकीकत है। आज 5 दिन हो गए तुम घर और दफ्तर से फरार हो, रात होटल के कमरे में गुजार रहे हो और दिन सड़कों पर आवारा गर्दी करके, लेकिन क्या एक लम्हे के लिए भी तुम उसकी यादों को अपने दिल से निकाल सके हो?
0: नहीं, नहीं। जिस कदर उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी यादें इतनी ही शिद्दत अख्तियार करती जा रही है।
1: तो फिर ये दावा क्यों कर रहे हो कि तुम उसे भूल जाओगे?
0: लेकिन मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ।
1: तुम अपने जमीर को धोखा दे रहे हो। जज्बात और एहसास का लगाव दिल से होता है, दिल से। तुम्हें ये देखना चाहिए कि उसका दिल कितना खूबसूरत है और वो तुम्हें किस हद तक चाहती है।
0: हाँ, तुम ठीक कहते हो, इसकी चाहत बेपनाह है।
1: तो फिर उसे अपना लो, उसकी खूबियों को देखो अक्सर, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम एक अदीब हो, मोहब्बत की फरसूदा रवायतों को तोड़ दो और एक मिसाल कायम करो।
0: शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं बालों के बगैर एक पल भी जी नहीं सकता।
1: मैं जानता हूं कि बालों तुम्हारी जिंदगी है।
0: हाँ, बालों मेरी जिंदगी है। मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। तुमने मुझे सही मशवरा दिया है।
1: मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं,

0: बानो बानो,
1: क्या बात है अख्तर साहब? आप अपना सामान लेने आए हैं? ले जाइए, शौक से ले जाइए। मैं तो समझ रही थी कि आप सामान ही छोड़कर भाग गए।
2: नहीं बानो, नहीं, ऐसा ना कहो, मेरे दिल पर चोट लग रही है। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, तुम तो मेरे ख्वाबों की मलिका हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाता?
1: अख्तर साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जमाने वाले तो सभी से मेरा मजाक उड़ाते आ रहे हैं और मैं अंदर ही अंदर टूटती रही। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं टूट कर बिखर जाऊँ?
2: नहीं बानो, नहीं। जिस दिन तुम टूट कर बिखर जाओगी, उस दिन मैं बिखर जाऊंगा।
1: ये डायलॉग बहुत खूबसूरत है अख्तर साहब, इसे नोट कर लीजिए, कहानी में काम आएगा।
2: ये डायलॉग नहीं, मेरे दिल की आवाज है बानो। मैंने तुमको दिलो जान से चाहा है, तुमसे प्यार किया।
1: प्यार? अख्तर साहब, आप मेरे अंदर की चिंगारियों को फिर हवा दे रहे हैं। जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से थपक कर सुलाया है, इसे ठंडा किया। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक चेचक ज्यादा स्याफाम लड़की हूँ, मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। अख्तर साहब, किसी को खुश नहीं रख सकती।
2: बानो, ज़ाहिरी हुस्न कोई हुस्न नहीं होता, ये तो वक्त के साथ ढल जाता है। असल खूबसूरती तो दिल में होती है बानो, दिल में। दाग तो चांद में भी होता है, मगर इसकी चांदनी हमेशा बेदाग होती है बानो। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता, एक पल के लिए भी जी नहीं सकता बानो। हाँ, मेरे सीने से लग जाओ बानो, मेरी बाहों में समा जाओ बानो, मेरी बाहों में समा जाओ।
1: तुमने मेरी अमंगों की अपनी जिंदगी भर की नई जिंदगी।
3: सामिन, आप सुन रहे थे ड्रामा, मौजू था चांद का दाग। तहरीर थी नवेदा हाशमी की और पेशकश थी जमालुद्दीन साहिल की। चांद के उन्वान से हम आपकी खिदमत में गजल पेश करेंगे, लेकिन पहले कुछ तذکرہ करते हैं। आज 9 मई है और 9 मई को, मई के दूसरे हफ्ते को, महाजिब परिंदों का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन परिंदों की हिफाजत, उनके हिजरत के रास्तों और माहौलियाती ख़तरात से वाकिफ़ कराया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि परिंदों की आबादी में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है, उसके घोंसले को, मस्कन को, आशियाने को तबाही से बचाया जाए। दुनिया में 4000 परिंदों की किस्में हैं जो हिजरत करती हैं, हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करके मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। परिंदे फितरत का एक हसीन हिस्सा है, ये परिंदे माहौलियाती तवाज़ुन का ज़रिया है। फूलों की गुर्दाफशानी और मुख्तलिफ बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ज़मीन के कीड़े मकोड़े मार कर उसे खा जाती हैं और फिर उस ज़मीन को पैदावार के लिए बेहतर बनाती हैं। परिंदे फितरत और इंसान के लिए नहायत ही फ़ायदा मंद है। परिंदे हमारे माहौल को बेहतर बनाने के साथ इंसानी सेहत और ज़रूरी पैदावार के लिए भी ये नहायत मुफीद है, और परिंदों की आवाज़ से, उनकी चहल पहल से हमारी फ़िज़ा नहायत ही खुशगवार रहती है। जब तक ये परिंदे आसमानों में परवाज़ करेंगे, हमारी दुनिया हसीन और ख़ूबसूरत रहेगी, और इसके लिए हमें मुनासिब माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। सामिन, अब चलते हैं अगली पेशकश की जानिब, और बज़्म मौसीक़ी में पेश खिदमत है नहायत ही उम्दा सी

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान की पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नूतन। श्रोताओं, तलत महमूद को कौन नहीं जानता। इनका परिचय किसी का मोहताज नहीं। ये एक भारतीय गायक एवं अभिनेता थे। उनकी थरथराती आवाज के कारण उन्हें मशहूर गजल की दुनिया का राजा भी कहा जाता था। उनका जन्म 24 फरवरी 1924 एवं मृत्यु 9 मई यानी आज ही के दिन 1998 में 74 वर्ष की उम्र में हुई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हीं के गाए चंद गीतों का श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके रेडियो सेट पर भेजते हैं ये गीत, जिसमें उनका साथ दिया है शमशाद बेगम ने। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का।

फिल्म छाया का गीत अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद एवं लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत सलिल चौधरी का था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाबुल का गीत तलत महमूद एवं शमशाद बेगम की आवाज़ों में, बोल शकील बदायूनी के और संगीत दिया है नौशाद ने।

फिल्म दाग का गीत अभी आप सुन रहे थे। बोल शैलेंद्र के और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और स्वर दिया था तलत महमूद ने। अब सुनिए फिल्म दिले नादान का ये गीत जिसे लिखा है शकल बदायूनी ने और संगीत गुलाम मोहम्मद का और आवाज़ दी है तलत महमूद ने।

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। तलत महमूद के गाए कुछ गीत आपने अभी सुने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हमारा अभी जारी है। इससे पहले आइए सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06-272-222-481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म बाप रे बाप का ये गीत किशोर कुमार एवं आशा भोसले की आवाजों में। संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

किशोर कुमार एवं आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म 9-2-11 में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था एसटी वर्मन ने।

कोरा कागज था ये मन मेरा। ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म आराधना से। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

जुबिन नौटियाल के आवाज में आप सुन रहे थे अभी ये भजन। अगला भजन हम आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

जगजीत सिंह के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। इसी के साथ भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे वाद्य वादन में पंडित भजन सोपोरी के द्वारा संतुर वादन में राग यमन 3 ताल में निबद्ध।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम का प्रसारण अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आइए अब श्रोताओं आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं आज आइए सुनते हैं तलत महमूद के कुछ चुनिंदा गीत। तो सबसे पहले सुनते हैं फिल्म

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेहरबानी से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नादान से तलत महमूद की आवाज़ में।

श्रोताओ, ये गीत था फिल्म नादान से और इस गीत के गीतकार थे चिक चॉकलेट और संगीत दिया था चिक चॉकलेट ने और गीतकार थे पीएल संतोषी। श्रोताओं, तलत महमूद का आज पुण्यतिथि है, आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी और उन्हें गज़लों का बादशाह शहनशाह गज़ल कहा जाता था। वो एक अभिनेता, साथ ही साथ गायक और संगीतकार भी थे। उनका जन्म 24 फरवरी 2024 को हुआ था लखनऊ में, जो आज उत्तर प्रदेश में है। तलत महमूद को पद्म विभूषण से नवाजा गया था 1992 में। उनके कलाकार के तौर पर उनके जीवन में, उनके सिनेमा में जो उनकी योगदान रही थी, उसके लिए उन्हें दिया गया था ये पद्म विभूषण। तो आइए सुनते हैं एक और गीत, तलत महमूद के ही गाए हुए, फिल्म से लिया गया, औरत तेरी यही कहानी से।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म परछाइयां का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म सागर का ये गीत अभी गा रहे थे किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्यम। गीतकार थे जावेद अख्तर और संगीत दिया था आरडी वर्मन ने। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म दीवाना से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में।

समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था नदीम श्रवण ने। फिल्म दीवाना का ये गीत, आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम ग्रंथ से, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में।

फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आ गले लग जा से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की ही आवाज़ में।

प्राण जाए पर वचन न जाए का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। श्रोताओं भी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। और आइए इस सफर में ये आखिरी गीत सुनवाते हैं फिल्म लोफर से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

नमस्कार श्रोता बहनों, स्वागत है आपका कार्यक्रम नारी संसार में। मैं हूँ रजनी, आपकी रेडियो सखी। नारी संसार कार्यक्रम जहाँ बात होती है नारी शक्ति की, ममता की, संघर्ष की और प्रेरणा की। तो बहनों, आज भी हम विभिन्न रोचक विषयों के साथ उपस्थित हैं। और हाँ बहनों, बीच बीच में हम फिल्मी नगमों का आनंद भी लेते रहेंगे। तो बस कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस रेडियो सफर में, और विभिन्न जानकारी प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन के सागर में गोता भी लगाते रहिए। बहनों, आज हम सबसे पहले बातचीत का आगाज करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण विषय से। और आज विश्व प्रवासी दिवस है, हम सभी मिलकर इस दिवस को मना रहे हैं। और इस बार का थीम है पक्षियों के लिए सुरक्षित आकाश। बहनों, सुबह का समय हो और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे तो मन प्रसन्न हो उठता है। आसमान में उड़ते पक्षी हमें स्वतंत्रता, आनंद और प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पक्षियों के लिए हमारा आकाश कितना सुरक्षित है? हर वर्ष लाखों प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके एक देश से दूसरे देश पहुँचते हैं। वे मौसम बदलने पर भोजन और सुरक्षित स्थान की खोज में निकलते हैं। साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो या बार हाइड्रेटेड गूज जैसे अनेक पक्षी भारत में भी आते हैं, लेकिन आज इन पक्षियों के सामने कई खतरे उत्पन्न हुए हैं। आकाश में फैले बिजली के तार, मोबाइल टावर, तेज रोशनी और वायु प्रदूषण उनकी उड़ान को प्रभावित कर रहे हैं। कई बार पक्षी दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। और जंगलों की कटाई और जलाशयों के सूखने से उनका जीवन और भी कठिन हो गया है। प्रिय श्रोताओं, यदि पक्षी नहीं रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। पक्षी बीज फैलाते हैं, कीटों को नियंत्रित करते हैं और पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए उनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। तो यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आकाश हो और उनका संरक्षण सही ढंग से हो सके। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे पक्षियों के लिए सुरक्षित आकाश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, जलाशयों, तालाबों को साफ और स्वच्छ रखकर, उसकी रक्षा करके, अनावश्यक तेज रोशनी का उपयोग कम करके पक्षियों का शिकार न करें और दूसरों को भी इस ऐसी हिमायत नहीं करने दें। बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करना सिखाएं। हम अपने छोटे छोटे प्रयास से भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो श्रोताओं, विश्व प्रवासी दिवस केवल एक दिवस नहीं बल्कि प्रकृति को बचाने का मुहिम है, संदेश है। जब आकाश सुरक्षित होगा तभी पक्षियों की मधुर आवाज़ें हमेशा हमारे जीवन में खुशियां भरती रहेगी। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हम पक्षियों की रक्षा करेंगे और उन्हें सुरक्षित आकाश देने में अपना पुरजोर योगदान देंगे। तो आइए पक्षियों से रिलेटेड ही एक फिल्म संगीत सुनते हैं।

तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब समय हो रहा है हमारी श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो सखी रजनी से कार्यक्रम नारी संसार में।

ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।

ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पे रहती है। बच्चों को संभालना हो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना हो, या ऑफिस, घर, सबकी बातें, सबकी जिम्मेदारी महिलाओं पे होती है। मतलब सारा संसार जो घर परिवार होता है उनका, उनकी सारी देखभाल की जिम्मेदारी महिलाओं पे होती है। और ऐसे में महिलाओं का स्वस्थ होना, भला चंगा होना अति आवश्यक है। तो बहनों, इसी सब्जेक्ट से संबंधित, यानी कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखें, इस विषय पर सुनते हैं ये वार्ता हमारी रेडियो सखी आरती से।

नमस्कार, मैं आरती। महिलाएं किसी भी समाज का आधार स्तंभ होती है। वे न केवल परिवार का पालन पोषण करती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में उनका स्वस्थ रहना न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश अक्सर महिलाएं अपने जिम्मेदारी के निर्वहन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देती है। ये प्रवृत्ति न केवल उनके वर्तमान जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है बल्कि भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसे प्राथमिकता भी दें। महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल एक बहुआयामी विषय है जिसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं का भी शामिल किया जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो एक संतुलित आहार, पौष्टिक आहार इसका महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं को अपने भोजन में फल, सब्जियां, अनारदाने और स्वस्थ वसा को शामिल करना चाहिए। प्रसंस्कृत भोजन और जंक फूड और अत्यधिक चीनी वाले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम महिलाओं को प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम जरूर करना चाहिए, जैसे कि तेज चलना, योग करना, कसरत करना। और हाँ, व्यायाम न केवल शरीर को फिट रखता है बल्कि तनाव को भी कम करता है। साथ ही पर्याप्त नींद भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि अच्छा भोजन जरूरी है और व्यायाम जरूरी है। हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद जरूर ले, क्योंकि नींद की कमी से थकान और चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो सकती है।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: बहनों, विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए अब बात करते हैं महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं के विषय पर। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना और महिला सशक्ति केंद्र योजना प्रमुख हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, इनका लाभ महिलाएं उठा सकती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य

महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। इसमें धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आती है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों को के उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा के लिए बचत की बढ़ावा देता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहनों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। सरकारी योजनाएं उनके सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। आवश्यकता है इस बात की कि हर महिला इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करे और उनका लाभ उठाए। श्रोताओं, हम सब मिलकर महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें। इन योजनाओं के कारण आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को तक इन योजनाओं का सही जानकारी सही समय पर पहुंचना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सके। महिलाओं का सशक्तिकरण ही देश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। तो महिला आत्मनिर्भर बने, शिक्षित बने, यही सरकार का भी उद्देश्य है और हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। महिला को सशक्त बनाने में, शिक्षित बनाने में हम सभी का योगदान होना चाहिए, तभी हम एक उज्ज्वल राष्ट्र और उज्ज्वल समाज की कामना कर सकते हैं। ये तो हुई महिलाओं के सरकारी योजनाओं के बारे में हमारी छोटी सी जानकारी, जिसे हमने आपसे साझा किया। आशा करती हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको और आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाएंगी। बहनों, अब बात करते हैं युवतियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके के बारे में। आज के समय में युवतियों के लिए खुद पर भरोसा होना बहुत आवश्यक है। यह न केवल उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है बल्कि जीवन को की चुनौतियों का सामना करने का ताकत भी देता है। आत्मविश्वास से ही वे अपने सपनों को पूरा करने और अपने अधिकारों को समझने और समाज में पहचान बनाने में सक्षम बनती हैं। जिन युवतियों में आत्मविश्वास होता है वे असफलता से घबराती नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर उससे सीखकर आगे बढ़ती हैं। इसलिए आत्मविश्वास सफलता और खुशहाल जीवन की पहली सीढ़ी होती है। तो आइए आज युवतियों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय के बातें करें। इसके लिए सबसे पहले छोटे छोटे लक्ष्य तय करना चाहिए, यानी छोटी उपलब्धियां आत्मविश्वास को धीरे धीरे मजबूत बनाना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को पहचानें और खुद को सराहें। सबसे पहले आप खुद को सराहेंगे तभी दुनिया आपको सराहेगी। आप अंडर एस्टिमेट ना हो। नई स्किल्स सीखने में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है, तो अपने को अपडेट करते रहना चाहिए। खुद को बार बार कमज़ोर समझना बंद करिए। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, ऐसा आप सोचते रहिए। अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहें। सीधे खड़े होना, आँखों में देखकर बात करना, ये सब छोटी छोटी बातें व्यक्तित्व निखारती है। अपने विचारों को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करिए। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। खुद की तुलना सिर्फ खुद से करिए, दूसरों से नहीं। समय समय पर ध्यान और मेडिटेशन करें, यह मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। और असफलता से डरे नहीं, गलतियों से सीख। गलतियां जो है सीखने का एक हिस्सा है, यानी गलतियां एक गुरु होती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन्हें स्वीकारें और आगे बढ़ें। बहनों, आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं मिलने वाली चीज़ होती है, यह स्वतः धीरे धीरे और प्रयास से मिलती है, विकसित होती है। तो बहनों, ये तो थी आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय जिसकी हमने चर्चा की। आइए चलते चलते सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडीन।
3: इसी के साथ आज के इस नारी संसार अंक से दीजिए रजनी को इजाजत, हम मिलते रहेंगे इसी वायदे के साथ, दीजिए विदा, नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
5: আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
4: मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें और साथ ही साथ आपको साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी देंगे। तो श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर के

2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत और दोपहर के 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। आप सुनेंगे मराठी गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी। 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत और 6:30 पर आप ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा। गांव घर का प्रसारण होगा जिसमें आज चर्चा का विषय होगा प्रवासी पक्षी दिवस। शाम 7 बजे हमारे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। चर्चा का विषय है अच्छी उपज के लिए बीजों उपचार आवश्यक। और रात्रि के 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण।

रात्रि के 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृति भारती का प्रसारण किया जाएगा और रात्रि के 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। एक साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना, कार्यक्रम हेलो जिंदगी आप सुन सकते हैं रविवार को। और माँ का, श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर है 0627222481 और मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। तो श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपके पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं आपकी रेडियो हमसफर, आपकी दोस्त चंदना, फिर से आ गई हूँ आपके साथ ढेरों पसंदीदा गीतों को सुनाने के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफ़र का और सुनते हैं ये पहली पसंद जो आई है फिल्म फरेब से, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं बेडी से हुकुम कर्माकर, सुन्नत कर्माकर, हार्दिक कर्माकर, प्राची कर्माकर और तनु कर्माकर। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी श्रीमती मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, फारूक भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश कुमार गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक पंखुड़ी, कांति निकेतन राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और सिद्धि गुप्ता। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनिस खत्री, सफ़ी खत्री, इर्दिश खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना और हासिम मीना। इसी गीत को सुनना पसंद किया है छत्तीसगढ़ पथरिया भैरवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल,

इस गीत को संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगली पसंद जो आई है ग्राम पंचायत बैठना से बलकरण अंजनी वर्मा, ज्योति अंजनी वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौटदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सौहार्द वर्मा और आयशी कृति वर्मा, रहमानिया मोहल्ला से महसूल, सीतामढ़ी से तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजरत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और रामपट्टी, गौसानगर से शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, मनोज कुमार सिंह, ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नेरन नेताम कुसुम नेताम। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ चौक केवटसा गायघाट मुजफ्फरपुर से राम सवर मंडल, गंगा सागर मंडल, हरी राय, कामेश्वर मंडल, अधवेश्वर मंडल, जला कुमार सिंह और साथ ही साथ ये नाम कुछ मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, माफ़ करेंगे उसके लिए। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी मीनाकारी, और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं ग्राम खेड़ावाड़ी हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, सारिका, सुरेखा, अफसुमन और सारा बोड़खे परिवार। और ये गीत है फिल्म दिलवाले से, जिस गीत को गाया है कुमार शानू ने। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना, आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

सुंदरखेड़ राजमादा नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवड़े, ज्योति नरवड़े, आकांक्षा नरवड़े, आकाश कुमार, इसी गीत को सुनना पसंद किया था। औरंगाबाद से राजेश साविल पाटी, सीता राजेश, राजदीप राजेश और राजशी राजेश, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, ये है अजीत नगर मलोट पंजाब से। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया था इनामत टोल भगवतीपुर पंचायत से नूतन सहनी, कंचन सहनी, बविता सहनी, कोमल सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, बीभा सहनी, ज्योति, पार्वती त्रिपुरारी, संतोष कुमार सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सैन। ग्राम फ्रांसिस से राजकुमार हुड्डी, सुरजन सिंह हुड्डी, प्रमोद कुमार हुड्डी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू और पप्पू, ये सभी सुनना पसंद कर रहे थे इस गीत को फिल्म खामोशियां से। तो श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। एक छोटे संतराल के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके पसंदीदा गीतों के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल से पहले आप सुन रहे थे फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का से लिए गए गीत को राधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में, और इस गीत को सुनना चाह रहे थे नाज मंजिल मैसोर सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना परवीन, अरहान बाबू, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, नवासी हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, साजा शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख, हीना शेख, मुजबिल बाबू, कोकिलवाड़ा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फजल शेख, नुसरत जहां नाज, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता और रुद्र गुप्ता। इसी गीत को सुना पसंद किया था कुशेश्वर साथ सलमगढ़ से मोहम्मद ईशा, सुबिना नाज, इरफान आज़ाद, मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, सना अफरीन, सादिया नूर, आरिश बाबू, समा परवीन, शाहिन परवीन, मोहम्मद परवीन, मोहम्मद परवीन तथा सौम्या फातमा, सुमैया फातमा, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजुरिया, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल, विवान और रमेश मिगलानी, करेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलंग, करण गीतू और निहारिका सानवे वंश बत्ता। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से लिए गए इस खूबसूरत से गीत को कुमार शानू की आवाज़ में, और उसके गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं गांधी चौक राजनगर मधुबनी से ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनामिका, तन्मय गजभैये, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशन देवगन, कौशल्या देवगन, हेमलता देवगन और टेम्पल देवगन, फरमाइशकर्ता छत्तीसगढ़ के हैं वेतरंगी भागवत, बिल्लेबई से गुलाब दास मानिकपुरी, रिंगीनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली श्रृंगारपुर से शालिक पुजारी, जतुका कृष्णपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

इस गीत को, ये गीत है फिल्म आशिकी का, अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना पसंद किया ग्राम पैजनिया जिला जलौन, सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थिक और अलौकिक चंचोलिया। तो इसी तरह से हमें लिखते रहिए खत और हम सुनाते रहेंगे आपको आपके पसंदीदा गीत। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, हमारा पिन कोड है 8।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारे पटना केंद्र से
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के पिकरेट परेड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से अधिक परिवारों के 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का निपटारा किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से अधिक परिवारों के लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा हो रहा है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली बाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम बाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी

सुनवाई हो रही है। 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठों का गठन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सिवान जिले में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5,000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बड़हड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 अन्य घायल हो गए। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल हुए वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने महिला विक्रेता समेत 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाक़दा एक तकरीब में मगरबी बंगाल में बीजेपी के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। वज़ीर आला के साथ साथ 5 काबीना वज़रा ने भी हलफ लिया। गवर्नर R.N. रवि ने वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ कई मरकज़ी वज़रा और बिहार के वज़ीर आला सम्राट चौधरी समेत बीजेपी के ज़ेर इक़्तदार रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत ख़जाना ने कहा है कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इन स्कीमों का मकसद तमाम लोगों, ख़ास तौर पर माशरे के महरूम और कमज़ोर तबक़ात को सस्ती माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से ज़ायद रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ अफराद शामिल हो चुके हैं। अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। श्रीमती सीतारमन ने मज़ीद कहा कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 10,10,000 से ज़ायद खानदानों के 21,500 करोड़ रुपए से

0: आपदा के क्लेम्स निपटाए जा चुके हैं। वजीर ख़जाना ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,84,000 से ज़ायद ख़ानदानों के तकरीबन 3,660 करोड़ रुपए के दावों की अदायगी की जा चुकी है। पटना हाई कोर्ट समेत रियासत की सभी अदालतों में आज कौमी लोक अदालत का इनाकाद किया जा रहा है। लोक अदालत में बाहमी समझौते की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के सिविल और बाज़ किस्म के क्रिमिनल मामलात का तस्फिया किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने आज पटना सिविल कोर्ट कम्प्लेक्स में मुनाकिद लोक अदालत का इफ्तिताह किया। लोक अदालतों में बैंक लोन, बिजली के तनाज़ात, गाड़ियों के हादसात का बीमा और लेबर तनाज़ात जैसे मामलात बाहमी रजामंदी की बुनियाद पर हल किए जा रहे हैं। इस बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से मुतालका मामलों की भी समाअत हो रही है। 90 दिन से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलात की समाअत के लिए एक इलाहदा बेंच तश्कील दी गई है। मगरबी हवा के असर से रियासत में गुज़श्ता एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवा के साथ बारिश हुई। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आज भी रियासत के बेशतर हिस्सों में तेज़ हवा के साथ बारिश का इम्कान है। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण और सीवान अजला में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने की वार्निंग जारी की गई है। इस हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। असातिज़ा तकर्रुरी के चौथे मरहले के इम्तहान का इश्तहार जल्द शाये करने के मुतालबे को लेकर कल पटना में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे के मामले में 5,000 तलबा के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। गांधी मैदान के थाना इंचार्ज अखिलेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीदवारों पर ट्रैफिक में खलल डालने, नज्म व नस्क को बिगाड़ने और पुलिस अहलकारों के साथ बदसलूकी करने का इल्ज़ाम है। मशरक़ी चंपारण ज़िला के ढाका ब्लॉक के तहत बड़हरवा फतह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लगने से 2 बच्चे समेत 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को सब्ज़ रंग में डुबोकर बेचने की वायरल वीडियो के मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने खातून फरोश समेत 9 खवातीन हॉकर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पटना IIT पटना के कैंपस में क्रिकेट खेलते हुए करंट लगने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। हलाक होने वाला तालिब इल्म मुंबई का रहने वाला है। वैशाली ज़िला के महनार जंदाहा मेन रोड पर योगी बाबा स्थान के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान होने वाले तसादुम में एक नौजवान जाँ बहक हो गया जबकि दूसरा नौजवान शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इसके साथ ही इलाकाई ख़बरों का यह बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं रोजगार सूचना। रोजगार सूचना में आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने IIT और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विभिन्न ट्रेंडों के लिए 726 इंस्ट्रक्टर अनुदेशक के पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 15 मई 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर ₹100 शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ₹35,400 प्रतिमाह होगा, साथ ही अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेंड में IIT डिप्लोमा के साथ CITS प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार BTCS की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। आयु सीमा होगी 18 वर्ष और अधिकतम पुरुष 37 वर्ष, महिला 40 वर्ष। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के लिए ₹100 आवेदन शुल्क देने होंगे। कैसे करेंगे आवेदन? ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov

0: .in पर जाएं, होम पेज पर दिए गए भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके फॉर्म भरें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फॉर्म भरकर फीस जमा करें, फीस सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल लें। चयन प्रक्रिया रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अगली रोजगार सूचना है CRPF से। 9175 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, 20 अप्रैल से आवेदन शुरू है, लास्ट डेट है 19 मई 2026। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में कांस्टेबल, तकनीकी ट्रेंड्समैन और पायोनियर के लिए 9175 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 20 अप्रैल से हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10वीं पास हो, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 10वीं पास के साथ हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कुल तकनीकी ट्रेंड में IIT की डिग्री भी होनी चाहिए। आयु सीमा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष, अन्य सभी न्यूनतम 18 वर्ष और 23 वर्ष है। सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र की छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जनरल EWS और OBC को ₹100 आवेदन शुल्क है, महिला एक्स सर्विसमैन निशुल्क। कैसे करेंगे आवेदन? ऑफिशियल वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं, होम पेज रिक्वायरमेंट सेक्शन में क्लिक करें, ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई सभी डिटेल्स दर्ज करें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें, इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रखें। चयन प्रक्रिया फिजिकल फिटनेस PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और ट्रेंड स्केल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

0: को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं, उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है, उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद

0: बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन, किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम

0: अणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां

0: आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म सपने साजन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म नसीब से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

फिर तेरी कहानी याद आई का ये गीत सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ में। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम, मराठी गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंद स्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
4: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियादे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बंट जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर, हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश।

0: जवान
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती। वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया। सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो। 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज। क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क?

0: पड़ता है। जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
1: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
0: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
1: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
0: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: हाँ, लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। हाँ, और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम,

0: अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप है, शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी

0: मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं अंधे कुएं में डालने के बराबर है, अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो और
0: मुझे घर जाना है। नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा ये बात है।
0: छोड़
2: मैं
3: यहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। तीन पकड़ एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो हाल फेर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तुमने?
2: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है

0: न लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
1: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
1: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
1: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है।
0: अब तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
1: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
1: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुँच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
1: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला, मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी मां से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी मां के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
1: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
1: है ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
1: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
1: मैं लाता हूँ। दवाई
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
1: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
1: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
1: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साइलेंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी,
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला दातारन ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ये थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना,
1: क्या
2: हमारे एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
2: जी,
1: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
2: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ,
2: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है, मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा।

0: नागोड़ा। मुझे याद है छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी,
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी। बहुत मजा आया उससे बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
0: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ,
0: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
0: राइट?
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे, हाँ? वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
0: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं
1: है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
0: उसकी
1: जी,
0: झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
1: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए पापड़ बेलना सब
0: मिलकर के
1: सब मिलकर काम करते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था और सब सब गणपति दिवाली सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को, जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा,
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी, जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा। जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल के
0: ये महिला विश्वविद्यालय,
1: स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बंबई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्यपद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर सके? जरूर।

0: मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा
0: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला
1: जी
0: में
1: जी
0: कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में
1: जी जी
0: दिखाते
1: जी
0: थे,
1: जी
0: अभी तो वो मामला बंद हो गया। शायद फिल्म
1: हाँ
0: डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं शुरू है। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ
0: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में BA किया मैंने
1: जी
0: म्यूजिक लेके।
1: जी जी
0: तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें BA तक। और BA का वो एग्जाम हुआ, और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब
1: हाँ
0: शादी हो गए।
1: अच्छा
0: 42 साल का मेरा जन्म है और
1: हाँ
0: 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ
0: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो BA हो गया, मैं बैठ गई घर में। मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
1: जी
0: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने,
1: जी
0: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, MA करो। MA में इंटायर म्यूजिक था
1: हाँ
0: SNDT में,
1: हाँ
0: तो उनकी बदौलत मैं MA करने के लिए गई। और
1: वाह
0: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी
1: हाँ
0: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक झिझक होती है कि जाओ
1: हाँ
0: कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज़्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा
0: बच्चों को।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: 62 में मैंने MA किया फिर।
1: वाह
0: हाँ, और फिर MA किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा
0: हाँ, तलत साहब के साथ, एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जाप गाने गाइए, कुछ
1: हाँ
0: फंक्शन हुआ लायंस क्लब
1: जी
0: का,
1: जी
0: तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी कूदते
1: दौड़ेगी
0: जाऊंगी कूदते जाऊंगी।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, तीन
1: क्या
0: महीने
1: बात
0: का वो टूर था हमारा,
1: क्या बात है।
0: और दो बेटियां, एक
1: हाँ
0: चार
1: हाँ
0: साल
1: हाँ
0: की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं
1: हाँ
0: बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से।
1: हाँ
0: और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स हैं,
1: जी
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहाँ जाके,
1: जी
0: कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछ, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने,
1: अच्छा
0: ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे।
1: वाह क्या
0: बहुत मजा आया
1: बात
0: टूर
1: है।
0: में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को
0: और
1: आपने याद
0: तलत
1: किया
0: साहब तो
1: तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने
0: ओके
1: श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे।
1: जी
0: हाँ
1: जी

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती थी।
1: पुरुष पर तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी,
1: जी
0: फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: वेस्ट इंडीज तलत साहब के साथ गए।
0: हाँ।
1: फिर उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी जी
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ हाँ
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के
0: जी।
1: लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज,
0: हाँ।
1: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा,
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
0: अच्छा,
1: दम मारो दम।
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस
0: हाँ
1: किया
0: हाँ
1: उनको,
0: जी जी
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सारे सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
0: जी
1: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए
0: हाँ
1: छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार गाने गा के ये
0: हाँ
1: लोगों को सामने से सुनते बैठू,
0: हाँ
1: बहुत ही भाग्य था
0: क्या
1: मेरा
0: बात
1: इस बारे।
0: है।
1: रफी
0: पर
1: साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
1: डुएट नहीं
0: नहीं
1: गाया।
0: गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
1: जरूर
0: सुने तो कौन
1: जरूर
0: सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, वो
0: मतलब
1: दूसरों
0: टीका
1: के
0: टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों की टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओहो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां
0: जी
1: हैं, तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए, अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो वो
0: हाँ
1: तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है। और वो

0: सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
1: हूँ। क्या बात है।
0: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ।
0: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो।
1: हाँ।
0: वो प्रमिला दादा का गाना लगता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में उन, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
1: जी,
0: गाने
1: जी।
0: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक काली पांच काली एक तक जाती है, तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
1: क्या बात है,
0: भेजे।
1: अच्छा।
0: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, बजाता है
1: जी
0: मुझे भी
1: जी
0: अच्छा लगता है।
1: हाँ। तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
1: अच्छा,
0: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक
1: हाँ,
0: का
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोमो के धागे, दम लगा कर रहेशा, इस फिल्म का
0: दम
1: गाना
0: लगा के
1: है।
0: है
1: जी
0: उसका
1: जी ये
0: पे,
1: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: हाँ
1: हारमोनियम पे,
0: मोह मोह के है
1: तो
0: और
1: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी,
0: आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: या
0: क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी
1: गीता
0: का
1: दत्त।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है?
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से,
0: जी,
1: तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी
1: हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह
1: आजकल
0: रही
1: वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं भी गाता हूँ मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबड़े
0: हैं,
1: में।
0: क्या बात है। तालीम बहुत जरूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट,
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वैरायटीज
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है,
0: बिल्कुल,
1: आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात, बिल्कुल
1: ना।
0: सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ, हाँ
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र, तो
1: रामचंद्र,
0: मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ
1: बड़ौदा में, मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी जी
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपनी आवाज में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
0: अच्छा,
1: मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब
0: ओहो
1: रियाज करके,
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा, फिर भी उन्होंने ये भी बोला
0: हाँ
1: कि ज्यादा नहीं करना,
0: हाँ
1: लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही
0: अच्छा
1: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: हाँ
1: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी
1: बांबू चा वना च झ झ बहुत से, बांबू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
0: हाँ
1: शील सजणे सजणे
0: हाँ
1: माझाच पाठी,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: उनके
1: लाइन
0: लिए
1: थी,
0: टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत
0: रहा होगा।
1: बहुत 3 बार हुआ टिक 4 बार हुआ इतने बार, या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो
0: जी जी
1: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं
0: हाँ हाँ
1: उनको
0: हाँ
1: बराबर ये
0: नुक्ता लगा
1: करके
0: के,
1: लाइन
0: क्यों
1: में,
0: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दें हमें?
1: हाउस ऑफ बैम्बू
0: जी जी
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54 द हाउस, जिसे मॉड्यूलेशन
0: हाँ
1: फोर की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
0: जी जी जी
1: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।

0: स्वप्नाचा झुला ला ला ला ला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: सुनका तो क्या,
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छा. थोड़ा सुना दो.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो भी एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा है, और कभी नन्ही सी बेटी बन के आ रहा था।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लिखावटी
0: गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है पत्र

0: कार परिषद थी
1: हाँ हाँ
0: कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है
1: जी,
0: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे
1: जी।
0: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ मतलब मेरा गाना
1: हाँ हाँ।
0: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ।
1: विनम्रता की हद है,
0: हद है, हद है।
1: ओ, ओ, ओ, ओ।
0: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
1: जी,
0: मैंने
1: जी,
0: वो कव्वाली गाई निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
1: जी जी
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
1: जी जी क्या बात, वाह वाह
0: बहुत अच्छा लगा।
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
0: जी,
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
1: जी जी,
0: हाँ
1: हंसते
0: जख्म
1: जी जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
1: हंसते जख्म फिल्म का जी, बिल्कुल वही सुनते हैं।

मीडियम वेव 230.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम।

युवा दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में परिवार और समाज को ध्यान में रखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मां। मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरे जीवन की सबसे बड़ी भावना है। दोस्तों कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया है। मां का प्यार निस्वार्थ होता है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। वैसे तो मां के लिए आभार व्यक्त करने के लिए हर दिन होता है, लेकिन हर साल ये जो मई महीना है उसमें दूसरे रविवार को मां के सम्मान के लिए मदर्स डे का आयोजन होता है। जी हां दोस्तों, 10 मई रविवार को इस साल मातृ दिवस मनाया जा रहा है। ये ऐसा खास अवसर होता है जब हम अपनी मां के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। आप अपनी बात हमारी बात तो छोड़िए, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं काफी उत्साह के साथ इस दिन को मनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इस दिन बच्चे अपनी मां के त्याग, प्रेम और देखभाल पर निबंध लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, ये एक बढ़िया मौका है मां के प्रति सम्मान और प्यार जताने का। हम सब भी इसका लाभ उठाएं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आप तक कार्यक्रम संबंधी एक सूचना पहुंचा दें। श्रोताओं, मां को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। मां एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, 0627222481। दूसरा नंबर है 9430029353, 9430029353। समय याद रखें, रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं ये लोक भजन।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

फिल्म संगीत में अभी आप नए गाने सुन रहे थे। फिल्में थी जुड़वा 2, पटियाला हाउस, लैला मजनू, ऑल इज वेल। आवाजें थी मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर, विशाल ददलानी, अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, दूसरा नंबर ही 9430029353। समय याद रखें, रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: जुम्मे भी 231.5

5 मीटर पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। कामघर कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल, संध्या 6:30 पर। किसान भाई खेती गृहस्थी सुनेंगे शाम 7:00। इसके तहत आज शामिल है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कुछ फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं संध्या 7:52 पर। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:15 पर। रात 9:30 पर संस्कृति भारती। रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। सुबह 9:10 पर उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। बच्चों के लिए साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी का प्रसारण किया जाएगा दिन में 10:30 पर।

कल दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी सुनिए। विषय है माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पमा नारायण। कार्यक्रम का संचालन करेंगे संजय कुमार। महिलाएं अपना कार्यक्रम सखी बहन सुनेंगी दोपहर 12 बजे 12:30 पर मैथिली नाटक अयाची का प्रसारण किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनिए दिन में 1:15 पर। रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा अपराह्न 3 बजे। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी चंद गजलों से संध्या 5 बजे। कुछ विद्यापति गीत सुनेंगे आप संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण किया जाएगा 6:25 पर। कामघर कार्यक्रम 6:30 पर और संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी। खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर। कुछ फिल्मी गाने 9:30 पर और 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

विद्यापति गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राम कुमार मल्लिक को, और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, स्वर कुंज बिहारी मिश्र का।

विद्यापति गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी हृदयकांत मिश्र। भारतीय जनता पार्टीक नेता शुभेंदु अधिकारी आइ कोलकाताक ब्रिगेड परेड ग्राउंड मे आयोजित एक समारोह मे पश्चिम बंगाल मे भाजपाक पहिल मुख्यमंत्रीक रूप मे शपथ लेलनि। मुख्यमंत्रीक संग पांचटा मंत्री सेहो शपथ लेलनि। राज्यपाल आर एन रवि मंत्री सबके पद आ गोपनीयताक शपथ दियौलनि। एहि मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहक संग संग कतेको केंद्रीय मंत्री आ बिहारक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित भाजपा शासित राज्यक मुख्यमंत्री सब छलाह। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा कहलनि जे शहर में नागरिक सुविधा के बढ़िया करब हुनकर प्राथमिकता होयत। पदभार ग्रहण कयलाक बाद पत्रकार सबसे गपशप में ओ कहलनि जे भविष्य के देखैत शहरक विस्तार पर ध्यान केंद्रित कयल जायत। जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन आई पदभार ग्रहण कऽ लेलनि। संवाददाता सबसे गपशप में ओ कहलनि जे हुनकर प्राथमिकता हरेक खेत धरि पानि पहुँचायब अछि। राजस्व आ भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल कहलनि जे विभागक चुनौती के अवसर में बदलल जायत। ओ कहलनि जे अधिकारी सभक लोकक प्रति जवाबदेही तय कयल जायत। पटना में संवाददाता सबसे गपशप में ओ कहलनि जे केओ गलती करता हुनका सब पर कानूनी कार्रवाई कयल जायत। पटना उच्च न्यायालय सहित प्रदेशक सब अदालत में आई राष्ट्रीय लोक अदालतक आयोजन कयल गेल। लोक अदालत में आपसी समझौताक आधार पर कतेको प्रकारक दीवानी आ किछु प्रकारक आपराधिक मामलाक निपटारा कयल गेल। पटना उच्च न्यायालयक मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू आई पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालतक उद्घाटन कयलनि। लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा आ श्रमवाद जेहन मामला आपसी सहमति सँ निपटाओल गेल। एहि बेर लोक अदालत में ट्रैफिक चलान सँ जुड़ल मामलाक सेहो सुनवाई भेल। 90 दिन सँ बेसी पुरान ट्रैफिक चलानक मामला लेल फराक फराक पीठ बनाओल गेल छल। शिक्षक नियुक्तिक चतुर्थ चरणक परीक्षाक विज्ञापन शीघ्रहि प्रकाशित कयल जाय। एहि मांग के लऽ कऽ काल्हि पटना में भेल विरोध प्रदर्शनक मामला में 5000 छात्र सब पर प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि। गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्र जनौलनि जे एहि मामला में 4 लोक के गिरफ्तार कयल गेल अछि। अभ्यर्थी सब पर ट्रैफिक बाधित करब, विधि व्यवस्था भंग करब आ पुलिसकर्मी सभक संग बदसलूकी करबाक आरोप अछि। भागलपुर जिलाक सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में पछिला दिन गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार गुड्डूक आई पटना में निधन भऽ गेलनि। हुनक पटनाक एकटा निजी अस्पताल में इलाज चलि रहल छल। ध्यातव्य जे अपराधी सभक गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमारक सेहो मृत्यु भऽ गेल रहनि। कृतज्ञ राष्ट्र आई वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापक जयंती पर हुनका श्रद्धापूर्वक याद कयलक। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह आ रामकृपाल यादव सहित कतेको गणमान्य लोक सब महाराणा प्रतापक प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। एहि मौका पर पूरा प्रदेश में कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार महाराणा प्रताप के श्रद्धांजलि दैत हुनकर कृतित्व आ कृतित्व के याद कयलनि। पश्चिमी विक्षोभक असर से प्रदेश में पछिला एक सप्ताह से वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग से भेटल जनतबक अनुसार पछिला 24 घंटा के बीच समस्तीपुर में सबसे बेसी 51.6 किलोमीटर वर्षा भेल अछि। 51.6 मिलीमीटर वर्षा भेल अछि। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से तेज हवाक संग वर्षा भेल। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल अछि जे आई राज्यक बेसी क्षेत्र में तेज हवाक संग वर्षा भऽ सकैत अछि। औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, रोहतास, सारण आ सिवान जिला में तेज हवाक संग झमाझम वर्षा आ ठनका खसबाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। एहि के लऽ कऽ रेड अलर्ट जारी कयल गेल अछि। पूर्वी चंपारण जिलाक ढाका प्रखंडक बरहरबा फतेह मोहम्मद गाम में एकटा दुकान में आगि लागि गेला सँ दूटा बच्चा सहित 3 लोकक झरकि कऽ मृत्यु भऽ गेल। घटना में 2 लोक घायल सेहो छथि। सुपौल जिलाक SSB सीमा चौकी नियोर स्थानीय पुलिसक मदद सँ भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र सँ 2 महिला के नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय टकाक संग गिरफ्तार कयलक अछि। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरा के हरियर रंग में डुबा कऽ बेचबाक वायरल भेल वीडियो के मामला में रेलवे सुरक्षा बल महिला विक्रेता सहित 9 महिला हॉकर के गिरफ्तार कयलक अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर पर प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए गामा घर कार्यक्रम।

आजुक गाम घरक दलान पर सब श्रोता लोकनि के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। आई शनि दिन आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुने छी कार्यक्रम झरोखा। सबसे पहिने आजुक जे कार्यक्रम है झरोखा हम सब की सब सुनब इस संबंध में विचार करी तो सबसे पहिने हम सब भगवती गीत सुनब। कलाकार हेता कुंज बिहारी मिश्र। ओकर बाद हम सब प्रायोजित कार्यक्रम सुनब ममता का आंचल। मुदा ताहि से पूर्व आई एकटा विशेष दिवस है ओ प्रवासी पक्षी दिवस। इस संबंध में विस्तार से गप करी। श्रोता लोकन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जनमानस में चिड़ै चुनमुनिक प्रति जागरूकता बढ़ेबाक लेल एकटा अभियान है। ई अभियान प्रवासी पक्षी ओकर आवास के संरक्षण पर जोर दैत है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में दू बेर मनाओल जाइत है, पहिल मई मास के दोसर शनि दिन आ दोसर अक्टूबर मास में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के आरंभ सन 2006 ईस्वी में भेल छल। अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल पक्षी के संरक्षण पर समझौता सचिवालय AEW के माध्यम से कैल गेल। पक्षी सभक पलायन एकटा प्राकृतिक चमत्कार है। ई प्रवासी पक्षी सब अपन बच्चा सभक भोजन लेल प्रजनन के लेल आ ओकर पालन पोषण लेल सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर उड़ कर ई काज करैए। एकर मूल कारण पर जो विचार करी तो सर्वोत्तम पारिस्थितिक तंत्र के खोज में ई प्रवास करैए। एहि चिड़ै सब में प्रवास के अलग अलग स्वरूप होइए। स्थिति प्रतिकूल भेला पर ई सब अपन उड़ान के भरैए। प्रवासी पक्षी सब कठिन मेहनत क अपन जीवन के लेल संरक्षण के लेल ई काज करैए। मुदा रास्ता में खराब मौसम प्राकृतिक आपदा के कारण वा कह सकै छी जे हमर अहाँ के ओकर प्रति खराब व्यवहार के कारण असमय काल कल्पित भऽ जाइत अछि। एहि प्रवासी पक्षी सभक रक्षा करब हमर सभक पुनीत कर्तव्य अछि। एहि पृथ्वी पर सब गोटे के समान रूप सँ जीवा के अधिकार अछि। संगे प्रकृति सब जीव जंतु के अपना हिसाब सँ रचना केने छथि। कोनो चीज बेकार नहीं है, केकरो अधिकारक हनन नहीं करक चाही। आब ई प्रश्न उठैया जे ई प्रवासी पक्षी सभक संरक्षण के कियाक आवश्यकता है। कह सके छी जे प्रवास एकटा बड़ कठिन यात्रा है। अइ में कई तरह के खतरा सब शामिल है जे अक्सर मानव गतिविधि के कारण हुई है। अनेक देश में लोग जिनकर आदत अलग अलग छन पक्षी के ओतबे खतराक सामना करो पड़े। प्रवासी पक्षी अपन वितरण क्षेत्र से कतेक स्थल धरि उड़ान भरे छथि जत सर्दी ठहराव स्थल पर नुकसान एकर अतिरिक्त बहुत रास परेशानी के सामना करो पड़े। हम सब कह सकै छी जे एकरा लेल योजना बनाओल जा रहल अछि जे कोना एकर संरक्षण के व्यवस्था कयल जाय जाहि सँ हिनकर सबक सुरक्षा भऽ सकै। सबसँ पहिने तऽ हम सब ई विचार करी जे एहि प्रवास सँ जे कठिन मेहनत कठिन श्रम कऽ कऽ ई सब अतेक दूर सँ अपन काजक लेल अबै छथि तऽ ओकर संरक्षण हेबाक चाही। तऽ गपशप करब हमसब

खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ साँझक बेर, साँझक बेरमे भगवतीक पूजा अर्चना घरे घर भऽ रहल अछि, देवालयमे, मन्दिरमे, सब ठाम।

पूजा अर्चना भऽ रहल अछि। तऽ एहन समयमे भगवती गीत हमसभ सुनलहुँ। गीतक कलाकार कुञ्ज बिहारी मिश्र। गप करब कनिक छोट सन विराम।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोता लोकन, अपने सुन रहल छी कार्यक्रम झरोखा, कार्यक्रम गाम घर के अंतर्गत एक कार्यक्रम संबंधी सूचना है। श्रोता लोकन, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272-222-481। श्रोता लोकन, एक बेर फोन नंबर फिर से लिख ले जाए, 06272 ई दरभंगा कोड है, आ फोन नंबर है 222-481। मोबाइल नंबर है 9430029353। समय मौन राखी, रवि दिन कल 10 बजे, 10 मई 2026 दिन के 11 बजे ऐ संग सूचना संपन्न भेल। श्रोता लोकन, अपन सबहक जे खास कर मिथिलांचल है, अइ मिथिलांचलक सभ्यता संस्कृति भाषा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। अठामक अतिथि सत्कार सेहो प्रसिद्ध है। अतिथि सत्कार कह सकै छी जे भारतीय संस्कृति आ ग्राम्य जीवन के एकटा अनमोल परंपरा है। कहल गेल अछि अपना सब अइठाम अतिथि देवो भव। कहबाक तात्पर्य अपने के घर में कोनो जे अभ्यागत अबै छथि, अतिथि अबै छथि, ओ देवता के स्वरूप होइ छथि। एखनो गाम में अतिथि के स्वागत हंसक मुस्कुराक हुनका पैर धोक हमर सबहक ई परंपरा अछि। हुनका नीक ठाम ओछाउन क बैसायल जाइए, जखने अबै छथि तखने एक लोटा पानि सेहो देल जाइए। अपन सभक गाम में अतिथि सत्कार के मुख्य विशेषताक संबंध में जँ विचार करी ने, भावनात्मक स्वागत। गाम में अतिथि के अभी तक सब से पहिने हुनका पानि आ संगे थकान के मिटेबाक लेल शीतल पानि देल जाइए आ संगे ओछाउनक व्यवस्था सेहो कयल जाइए। अइ सेवा में निस्वार्थ सेवा हुई है, बिना कोनो स्वार्थ से अपन सामर्थ्य से बेसी हुनकर सेवा भोजन आ आश्रय के व्यवस्था सेहो कयल जाइए। मधुर वाणी अतिथि के स्नेह आदर के संग हुनका संग गप करै छी, चाहे अपना घर में केहनो किया ने खेनाई बनल हुए, हुनका लेल नीक ओरियान करबे करै छी। जँ पहिने से पता रहिए तो घर के साफ सफाई, साफ ओछाउन के व्यवस्था, नीक भोजनक व्यवस्था से

0: ओहो निश्चित करै छी। इएह हमर सभक संस्कृति, हमर सभक परिचय, हमर सभक संस्कार अछि। श्रोता लोकनि, गप करब आब बेर भऽ चलल अइ। सुनी हमसब प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आँचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश है। ममता का आंचल कार्यक्रम शनिवार का दिन है, हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से। एक छोटी सी जानकारी हम दे दें कि ये कार्यक्रम, हालांकि आप जानते हैं, वैसे कपल के लिए, वैसे दंपत्ति के लिए है जिनको अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, शादी के कुछ साल बीत गए हैं, 1, 2, 3 कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा है और अब बच्चे की चाहत भी है। ऐसे में वैसे दंपत्ति के लिए कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कि IVF पद्धति से इलाज करवाया जाए तो बच्चा ठहर सकता है। ये एक सिर्फ छोटी सी बीमारी है, पहले ये पता लगाना होगा क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, काहे बच्चा नहीं हो रहा है, और इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आपको जाना ही होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ को हम लेकर आते हैं जिनका नाम है डॉक्टर श्रद्धा चकय्यार। लगातार वर्षों से आपके घर आंगन में हम आ रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और अब थोड़ा बहुत विश्वास भी जमने लगा है। बड़े बुजुर्गों, आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि जो विश्वास आपने हम पर दिखाया है वो आगे भी जारी रहना चाहिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और डॉक्टर श्रद्धा अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, बाकी सब ऊपर वाला जाने। बहरहाल, डॉक्टर श्रद्धा का नंबर नोट कीजिए जिन लोगों ने आज से हमारा ये कार्यक्रम सुनना शुरू किया है। नंबर है 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। वैसे दंपत्ति, हाँ, गांव देहात में अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बताएं कि जिनके शादी के 3-4 साल हो गए हैं, समझ रहे हैं ना, बच्चा नहीं है, अब घर बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो नंबर दिए हैं ना 9162562266, इस पर बातचीत कर लेना है। जहां चुप्पी टूटती है, हम यही चुप्पी तोड़ना चाहते हैं, जहां चुप्पी टूटती है वहीं इलाज शुरू होता है। नमस्कार, तो हमने आप लोगों को कह लिया, और पिछले हफ्ते हमने एक सवाल उठाया था, उंगली बहू पर ही क्यों उठती है, एक उंगली नहीं, उंगलियां कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज हम उससे भी बड़ा सच सामने लाने वाले हैं। घर में समस्या है लेकिन उस पर बात नहीं होती, जांच हो सकती है लेकिन कोई पहल नहीं करता, सच्चाई सामने आ सकती है लेकिन हम चुप हैं। क्यों भैया, क्यों चुप हैं? और यही चुप्पी इलाज को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। डॉक्टर साहिबा आ जाइए, स्वागत है आपका, और हम सिलसिला शुरू करेंगे सवालों का। अब तक आप समझ गए होंगे।
3: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
2: अच्छा बताइए, क्या कारण सिर्फ महिलाओं में है या हम सच्चाई जानने से बच रहे हैं?
3: राजेश जी, ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि कारण सिर्फ महिलाओं में नहीं होता है। आज जितना भी रिसर्च आया है उसमें ये पता लगा है कि अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहरता है
2: जी,
3: 30% कारण उसमें पुरुष होते हैं
2: जी,
3: 30% महिलाएं होती हैं,
2: हाँ,
3: और 40% कारण अनएक्सप्लेन होता है,
2: हाँ,
3: यानी कि वो महिला में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है,
2: हाँ,
3: और दोनों में भी हो सकता है
2: जी।
3: तो बीमारी, अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं ठहर रहा है तो कारण पुरुष और महिला दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जांच कराना। अगर आप जांच कराएंगे तभी

0: की पहल करने की। हर दंपति जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है, अगर वो पहल करेंगे तो रास्ता जरूर सामने आएगा और उन्हें बच्चा अवश्य प्राप्त होगा।
1: लेकिन डॉक्टर साहिबा, आपने भी देखा है, जिया है इस चीज को कि पुरुष जांच की बात जब भी आती है तो चुप्पी छा जाती है।
0: बिल्कुल सच। आज भी जमाना चाहे जितना भी आगे हो गया हो, पुरुष आज भी अपने जांच से हिचकिचाते हैं।
1: जी,
0: मैं इसमें एक आपको एक स्टोरी भी सुनाना चाहती हूँ कि
1: बिल्कुल।
0: एक दंपति मेरे पास आए, जहाँ हमने जब औरत का जांच किया तो पता चला कुछ उनको दिक्कत है।
1: जी,
0: तो कुछ दिक्कत है लेकिन वो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, वो इलाज से ठीक हो सकता था। लेकिन जब मैंने पुरुष को कहा जांच कराने के लिए तो वो हिचकिचा गए और वो बोले कि जब दिक्कत महिला में ही है तो मेरा जांच का क्या जरूरत है। तो मैंने बहुत समझाया तो किसी तरह से वो जांच के लिए तैयार हुए।
1: जी।
0: उनको उनमें भी कुछ दिक्कत पाया गया, लेकिन अच्छी बात है कि दोनों में छोटा छोटा दिक्कत था।
1: जी।
0: उन्होंने जांच किया, पहल लिया और आज उनके पास बच्चा है।
1: एक बात तब यहाँ समझ में आती है कि मतलब बीमारी से ज्यादा हम सच्चाई से डर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, खासकर पुरुष एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। वो ये सोचते हैं कि उनमें अगर शुक्राणु की कमी है तो उनके मतलब पुरुष में मेलनेस में कमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है। और पुरुष में अगर दिक्कत है तो इसके लिए एक छोटा सा जांच होता है जिसको हम लोग सेमेन एनालिसिस कहते हैं, यानी कि धात का जांच होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन अगर आप जांच कराएंगे तभी रास्ता खुलेगा।
1: जांच कराएंगे तभी रास्ता खुलेगा। हम आगे चुप्पी पर ही बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम ममता का आंचल चल रहा है। वैसे दंपतियों के लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, अभी भी बच्चा नहीं है, डरते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या जिस डॉक्टर के पास जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी ये मुहिम चला रहा है कि अब चुप्पी तोड़ना है, चुप्पी तोड़ना है और तभी इलाज शुरू होगा। हम नंबर बता रहे हैं डॉक्टर श्रद्धा चखियार का, नोट कीजिए 9162562266, 9162562266। एक और बात, पैसे को लेकर हिचकते हैं, अब यहाँ श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में EMI पर, हाँ EMI की सुविधा है, टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, 24 महीने तक टुकड़ों में आप पैसा दे सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। बड़े बुजुर्गों, ध्यान से आप इस कार्यक्रम को सुनिए और हमारी और डॉक्टर श्रद्धा की कही गई बात को एकदम चैन से सुनिए और उसे अपने बच्चों तक पहुंचाइए, इनिशिएटिव लीजिए, हम यही कहना चाहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर श्रद्धा, अगर हम ये चुप्पी तोड़ दें और दोनों की जांच कराएं तो क्या बदलता है?
0: सब कुछ बदल सकता है। जब कपल साथ में टेस्ट करवाते हैं तो सच्चाई जल्दी सामने आती है।
1: जी।
0: ब्लेम गेम यानी कि एक दूसरे पे जो दोषारोपण है वो खत्म हो जाता है।
1: जी।
0: सही ट्रीटमेंट जल्दी शुरू होती है। हाँ। और सबसे जरूरी, पति और पत्नी का रिलेशनशिप मजबूत होता है।
1: जी जी।
0: क्योंकि अब ये समस्या किसी एक का नहीं होता है, ये एक जर्नी बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि कपल चुप्पी तोड़े और इलाज कराएं। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ, निसंतानता होती क्या है।
1: बिल्कुल।
0: वैसे दंपति जो एक साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, तो उनको कहा जाता है ये दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं। तो जरूरी है अब जांच कराना और इलाज कराना। अगले एक साल आप किन्हीं से भी इलाज कराइए, जांच कराइए और इलाज कराइए। अगर 2 साल में बच्चा ठहर गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तरफ से भी बधाई उनको। लेकिन अगर 2 साल अब हो चुके हैं और बच्चा नहीं ठहरा है, तो जरूरी है कि अब आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि वो आपका बीमारी बेहतर पकड़ेंगे। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उसमें उम्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर महीना उनके बच्चा ठहरने की संभावना घटते जाती है। बच्चे ठहरने की संभावना सबसे ज्यादा जो होती है वो शादी के पहले साल होती है। 80% दंपति को इसी समय बच्चा ठहर जाता है।

0: एक साल में नहीं ठहरा, उनको अगले एक साल यानी कि दो साल में 90% दंपति को बच्चा ठहर जाता है। लेकिन अगर दो साल में भी नहीं ठहरा तो हर महीना उनको अपने से बच्चा ठहरने की संभावना 3-4% होती है और ये घटते जाती है, यानी कि 5 साल के बाद वो 1% या 0.5% या 0% हो सकता है। इसलिए अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे और सही जगह जो उसके विशेषज्ञ डॉक्टर है उनसे इलाज कराएंगे तो आपको बच्चा ठहरने की संभावना बढ़ेगी। चाहे अगर दवाई से भी अगर आपको बच्चा ठहरने की संभावना है वो ज्यादा होगा अगर आप जल्दी इलाज कराएंगे।
1: जी जी।
0: अगर आप कोई प्रोसीज्योर कराते या IVF जैसा एक कोई ट्रीटमेंट, बड़ा ट्रीटमेंट भी कराते तो इसकी भी सक्सेस रेट जो है वो उम्र पे डिपेंडेंट है। अगर कोई दंपति 30 साल में करा रहा है वो समझ गया है कि उसको अपने से बच्चे ठहरने में थोड़ा दिक्कत है, उनको एडवांस ट्रीटमेंट का जरूरत है और उन्हें IVF का जरूरत है, और अगर वो दंपति 30 साल में अपना IVF कराता है तो उसको बच्चा ठहरने की संभावना काफी ज्यादा है बनस्पत उस दंपति से जो 40-45 साल में अपना IVF करा रहा है। निसंतानता का जो रास्ता है, मतलब जो उनको मतलब निसंतानता टुवर्ड्स बच्चे का जो रास्ता है वो काफी सरल हो जाता है।
1: डॉक्टर साहिबा ने बहुत विस्तार से बताया कि उम्र पर सारा कुछ निर्भर करता है, बच्चा होना, कितना बच्चा हो सकता है, कितना सक्सेस रेट है, सारी चीज बताए। तो अगर जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं जब जहां चुप्पी टूटती है वहीं से इलाज शुरू होता है। एक छोटा सा सवाल और हम पूछ लेते हैं चुप्पी पर ही, जहां चुप्पी होती है वहां दूरी बढ़ती है और जहां बात होती है वहीं से उम्मीद शुरू होती है, डॉक्टर साहिबा, हाँ कि ना?
0: बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का इलाज दवाइयों से शुरू नहीं होता है, सच बोलने से शुरू होता है और सच बोलने के लिए चुप्पी तो तोड़नी पड़ती है। तो अगर कोई दंपति अगर हिम्मत करते हैं, सच बोलते हैं और अपना इलाज शुरू कराते हैं तो पता चलता है किस कारण से बच्चा नहीं ठहरा, और जब कारण पता चलता है तो इलाज तो हो ही जाता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्या कारण है जिससे बच्चा नहीं ठहर रहा है।
1: जी।
0: कारण औरत भी हो सकती है, कारण पुरुष भी हो सकते हैं, कारण दोनों हो सकते हैं या कारण अनएक्सप्लेन भी हो सकता है। हो सकता है औरत के अंडाशय में अंडा खत्म हो गया हो सकता है उसके पास इतने अधिक अंडे हो कि उसको अंडा बन के फूट नहीं रहा हो सकता है औरत का नली जाम हो जहां औरत का अंडा और पति का शुक्राणु मिलता है। हो सकता है बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो सकता है पुरुष के शुक्राणु में दिक्कत हो। दिक्कत कुछ भी हो सकता है लेकिन जरूरत है चुप्पी तोड़ने का और हिम्मत करके इलाज कराने का। और जब आप इलाज कराएंगे, आपने जब जिस दिन पहला कदम ले लिया, आप समझ लीजिए आप मंजिल तक अवश्य पहुंच पाएंगे।
1: और अब इसमें पैसा भी आड़े नहीं आएगा। हाँ, बड़े बुजुर्गों आप भी सुन लीजिए, पैसा भी आड़े नहीं आएगा क्योंकि श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में अब सारी सुविधाएं जो है EMI पर है। आप टुकड़ों में पैसा दे सकते हैं, बस आपको चुप्पी तोड़ना है, विशेषज्ञ डॉक्टर के पास आना है। एक बार हम डॉक्टर श्रद्धा का नंबर बता रहे हैं, 9162562266, 9162562266। फोन कीजिए, थोड़ी सी भी शंका है, थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगे आपको कि हाँ हम भी सफल हो सकते हैं, और सफल होइएगा ही, ये तो एक बीमारी है, तो इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। आज की बात याद रखिए, चुप्पी इलाज की सबसे बड़ी दुश्मन है और पहला कदम है खुलकर बात करना, अपनों से, डॉक्टर से, पति पत्नी दोनों साथ आए, दोनों जांच कराएं और सच्चाई से भागे नहीं। आइए आज एक फैसला करें, चुप्पी तोड़ो, सच को अपनाओ और इलाज की शुरुआत करो। जी हाँ, और मैं आपका राजेश इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर श्रद्धा चकहियार के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करता हूँ, निकलते हैं। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: श्रोता लोकनि, एखन हमसब सुनि रहल छलहुँ कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम छल ममता का आँचल। एहि संग आब आजुक झरोखा कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर

खेती गृहस्थी में सब श्रोता लोकन के स्वागत, सब किसान बंधु के नमस्कार। संगे किसान भाई लोकन, आई हम सब एहन विषय पर गप करब जकर जानकारी सब गोटे के आवश्यक है। ओना ई काज सामान्य रूपे हम सब अनेक वर्षक क रहल छी, मुदा एकर वैज्ञानिक विधि की है, ऐसे लाभ की है, ओहि संदर्भ में विस्तार से गप करब। हरेक किसान भाई लोकन के मन में ई गप होइ छन जे हमरा सब गोटे के अपन अपन खेत से नीक उपजा भेटा। बहुत गोटे प्रयास सेहो करै छै, मुदा सब गोटे के फसलक उपजा एक रंग नहीं हुई है। ओकर बहुत रास कारण है, समय पर रोपनी, समय पर खाद पानि, ओहि सबसे बेसी महत्वपूर्ण है जे अहाँ बीया केहन व्यवहार करै छी। बीया कोनो फसल के मूल आधार है। नीक उपजा में बीजोपचार के बड बेसी महत्व है, ऐसा उपजा में बेस वृद्धि हुई है। स्वस्थ आ निरोग बीयाक माध्यम से फसल से मनो अनुकूल उपजा प्राप्त कऽ सकै छी। तें कोनो फसल में बीजोपचार के महत्वपूर्ण स्थान है। बीया के अस्वस्थ करवला जे कारक सब है, ओ कवक, जीवाणु, विषाणु आ सूत्र कृमि। बहुत रास रोग के जनक बीयाक संग बीया के सतह पर वा बीया के भीतर रही है। ई सबटा मिलकर बीया के रोगी बना दैत अछि। रोगी बीया के अंकुरण क्षमता कम होइ है, उपजा सेहो कम होइ है, संगे ई बीयाक संग एक ठाम से दोसर ठाम आसानी से पहुँच जाइत अछि। प्रमाणित बीया के व्यवहार को वा बीजोपचार के माध्यम से बीज जनित रोग से बचाओल जा सकैया। रासायनिक बीजोपचार से फसल के प्रारंभिक अवस्था में जे बीज जनित रोग होइया, संगे मृदा जनित रोग सब होइया, ओकर नियंत्रण सुविधापूर्वक कैल जा सकैया। बीजोपचार बड़ बेसी सस्त आ सुविधाजनक अछि। हरेक विकसित देश में बीया नीक रहा कि अदला रहा, ओकरा बीजोपचार निश्चित रूप से कैल जाइए। अपनो सब ठाम जे सकांच किसान भाई लोकन छथि, बीजोपचार के प्राथमिकता दऽ कऽ करै छथि। किसान भाई लोकन अइ गप के ध्यान राखक चाही जे उपचारित बीया के व्यवहार कखनो मनुख वा जानवर के भोजन के रूप में नहीं देबाक चाही। संगे जाहि बर्तन में वा ड्राम में अपने बीजोपचार के लेल व्यवहार करै छी, ओकर व्यवहार पानि वा अन्न रखवाक लेल नहि करक चाही। ऐसो बहुत रास लाभ है। माटि के आ बीया के रोगजनक से सुरक्षा भेटैए, बीया के अंकुरण में वृद्धि होइए, प्रारंभिक रूप से फसिल एक समान सँ वृद्धि करैए। संगे माटि आ पातके ओकर व्यवहार सेहो नीक होइए। प्रतिकूल परिस्थितिमे फसिल में उपजा सेहो नीक होइए। बहुत तरह से होइए बीजोपचार, जेना बीज ड्रेसिंग, बीज कोटिंग, बीज प्लेटिंग। बीज ड्रेसिंग ये उपचार के सबसे सामान्य तरीका अछि। बीया के सुखायल मिश्रण वा घोल से एकरा जे छै उपचारित कैल जाइए। ई व्यवस्था में बीया के नीक जकां उपचारित को ओकरा रोपल वा बाउ कैल जाइए। तो श्रोता लोकन, गप करब हम सब, आब गीत नादक आनंद ली हम सब, मुदा ताई से पूर्व हम सब सुनी कार्यक्रम, एकटा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नई दिल्ली 1 और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ 8860088827।
0: ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ए परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है। उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा। हम विवाह बंधन में बनते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में गम में डूब जाते हैं। पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी ऐना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम उड़ान शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

दोस्तों, देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भागकर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी

सात प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया। और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया, उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं, पर बस यही नहीं करना है दोस्तों। जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

0: तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, विचार, सवाल या आपके परामर्श हमें लिख सकते हैं। तो एक बार फिर हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर याद रखिए, अपनी आशा के दामन को पकड़ के रखिए, क्योंकि जिंदगी में आशा ही हमें आगे लेके जाती है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

एखन हमसब सुनि रहल छलहुँ प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आब बेर भऽ चलल अछि सुनी मौसम सम्बन्धी सूचना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्रसँ 6 मई सँ 10 मई धरिके मौसम पूर्वानुमान एहि तरहे अछि। एहि पूर्वानुमानित अवधिमे उत्तर बिहारके जिला सबमे हल्लुक आ मध्यम गरजवला मेघ बनल रहि सकैए। एकर प्रभावसँ

अनेक स्थान पर हल्लुक आ मध्यम वर्षा सेहो भऽ सकैत अछि। वर्षाक समय तेज बरसात सेहो बहि सकैए। एहि अवधिमे अधिकतम तापक्रम 30-31 डिग्री सेल्सियस जखनकि न्यूनतम 20-22 डिग्री सेल्सियस धरि रहबाक सम्भावना अछि। सापेक्ष आर्द्रता भिनसरमे 80-85% आ बेरुपहर 35-40% धरि रहबाक सम्भावना अछि। पूर्वानुमानित अवधिमे 20-22 किलोमीटर प्रति घंटाक दर सँ पूर्वा हवा चलबाक सम्भावना अछि। किसान भाई लोकनि के लेल समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि। पिछला किछु दिनमे उत्तर बिहार के जिला सबमे किछु ठाम मध्यम वर्षा भेलै, जकर परिणाम स्वरूप खेत सबमे पर्याप्त रूप सँ नमी आबि गेल अछि, जे एखन जे फसिल लगबऽ वाला अछि ओकर लेल समय अनुकूल परिस्थिति बनि गेल अछि। तैं किसान भाई लोकनि ध्यान राखी जे 15 तारीख धरि, माने 15 मई धरि हरदिके रोपनी निश्चित रूप सँ आरम्भ कऽ देबाक चाही। हरदिके जे उन्नत प्रभेद सब अछि, अनुशंसित प्रभेद अछि, जेना राजेन्द्र सोनिया, राजेन्द्र सोनाली, उत्तर बिहार के लेल अनुशंसा कयल गेल अछि। खेत के जोताई में 25-30 टन सरल गोबरक खाद संगे नेत्रजन 60 किलोग्राम, 75 किलोग्राम अस्फुर, 50-60 किलोग्राम पोटास, 100-120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सामान्य रूपे व्यवहार करक चाहिए। जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से अपने सामान्य रूप से व्यवहार कर सकै छी। हरद के लेल बिया के दर अपने 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सामान्य रूप से राखक चाहिए। बिया के जे प्रकंद के आकार हुई है 30-35 ग्राम के हेबाक चाही, जाहि में 4-5 स्वस्थ कली रहब निक मानल जाइत अछि। रोपनी में ध्यान राखी किसान भाई लोकनि, एक पैंत सँ दोसर पैंतक दूरी 30 सेंटीमीटर, एक गाछ सँ दोसर गाछक दूरी 20 सेंटीमीटर राखक चाही। हरदि के रोपा काल में 5-6 सेंटीमीटर गहीर रोपक चाही। निक उपजाक लेल अपने एकरा जे छै 2.5 ग्राम डाइथेन M45 आ 0.1% कार्बन डाइजिन प्रति किलोग्राम के दर से बिया के घोल बनाकर आधा घंटा देर उपचारित करक चाही। किसान भाई लोकन, आद के बुआई सेहो अपने 15 मई से क सकै छी। आदिक लेल मरान आ नदिया किस्म के उत्तर बिहार के लेल अनुशंसा कयल गेल अछि। खेत के जोताई में अपने 25-30 टन सरल गोबरक खाद नेत्रजन 30-40 किलोग्राम अस्फुर 50 किलोग्राम पोटास 80-100 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से सामान्य रूप से व्यवहार करक चाही। संगे बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करक चाही। आदिक लेल बिया अपने के 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से राखि सकै छी। एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर अनिल कुमार कर्ण के चलवाक आज्ञा देल जाए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी और काम घर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र

सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के बिग्रेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री

0: मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इधर बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए शहरों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
1: जो नए टाउनशिप की कल्पना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है, और उसके तहत हमको नए शहरों को एक वृहद रूप से भविष्य को देखते हुए उसको हमें विस्तार के साथ साथ उसमें सुविधाएं भी बढ़ानी है। उसके अलावा हमारी जितने भी अभी वर्तमान में शहरी क्षेत्र हैं, या वो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, तो उनमें भी बेटर सुविधाएं फैसिलिटीज हमको पहुंचानी है और लोगों को आसानी से सरकार की सुविधाएं मिले, योजनाओं का लाभ मिले और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी क्षमता के अनुसार 100% देते हुए बिहार की प्रगति के लिए और बिहार के लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकूं।
0: जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हर खेत तक पानी पहुंचाने की है।
2: कि हमारी प्राथमिकता है कि हर खेत तक कैसे सिंचाई का पानी पहुंचाया जाए, एक एक गांव में, एक एक खेतों तक, हमारे किसान के खेतों तक पानी पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं, सर्वे हो रहा है और हम लोग का टारगेट है कि 30 तक एक भी खेत नहीं छूटे, किसान के खेतों तक पानी पहुंचे।
0: राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि विभागीय चुनौतियों को अवसर में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लोगों के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी गलत करेंगे उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
3: कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया कि मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज को याद रखना। तो इसलिए आने वाले समय में एक एक लोग जनता के प्रति जिम्मेवार बने, इसके लिए पदाधिकारी, कर्मचारी, सारा सिस्टम ईमानदारी से और जिम्मेवारी से काम करे तो मैं उसको सम्मान करूंगा। और जो आदमी सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत करेंगे, या तो वो सुधरेंगे या जेल के सलाखे के अंदर रहेंगे।
0: प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को लिखे पत्र में कार्य योजना की रूपरेखा मांगी है। लोक भवन ने कहा है कि जून महीने में सभी विश्वविद्यालयों के अकादमिक सत्र की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को वित्तीय स्थिति भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव के पाठक को बिहार में नियम कानूनों को सरल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें पुराने कानूनों को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू किए गए डी रेगुलेशन के दूसरे चरण के तहत लंबित मामलों को निपटाकर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है। इस सिलसिले में उन्होंने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ पटना में उच्च स्तरीय बैठक भी की है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार की दीवानी और कुछ प्रकार के आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालतों में बैंक ऋण, बिजली वाद, वाहन दुर्घटना बीमा और श्रम वाद जैसे मामले आपसी सहमति के आधार पर निष्पादित किए गए। पहली बार लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की भी सुनवाई की गई। लोक अदालतों में 90 दिन से अधिक पुराने ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग पीठ का गठन किया गया था। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि अररिया में 1,227, शेखपुरा में 545 और शिवहर में 287 मामलों का निष्पादन किया गया। सुपौल में ट्रैफिक चालान से जुड़े 163 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और

0: अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित किए जाने की मांग को लेकर कल पटना में हुए विरोध प्रदर्शन के मामले में 5000 छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थियों पर ट्रैफिक बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने और पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को युवाओं की कोई परवाह नहीं है। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बिहार सरकार पर युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार देने की जगह सिर्फ सत्ता बचाने और राजनीतिक समीकरण साधने में जुटी है।
1: हमारे TRE के 4 के बच्चों को मारने का जो प्रवृत्ति सरकार ने अपनाई है, मैं उसको लेकर के घोर निंदा करता हूं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता और लीडर और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसे गंभीरता से लिया है और हम उन TRE के बच्चों को साथ और उनके संघर्ष के साथ देने के लिए हम तैयार हैं।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। रोहतास जिले में कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर में सबसे अधिक 51.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 10 मई उत्तर बिहार के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया। यह मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव में मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च

0: अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृतज्ञ राष्ट्र आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजधानी पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मंत्री लेसी सिंह और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में पिछले दिनों अपराधियों की गोलीबारी में घायल सभापति राजकुमार कुट्टू का आज पटना में निधन हो गया। उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरतलब है कि अपराधियों की गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की भी मौत हो गई थी। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बराड़वा फतेह मोहम्मद गांव में एक दुकान में आग लग जाने से दो बच्चों समेत तीन लोगों की झुलसकर मौत हो गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। अररिया आरएस थाना क्षेत्र स्थित एक किराना गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे को हरे रंग में डुबोकर बेचने के वायरल वीडियो के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने 9 महिला हॉकरों को गिरफ्तार किया है। आईआईटी पटना परिसर में क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र तेलंगाना का रहने वाला था। वैशाली जिले के हाजीपुर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीतामढ़ी जिले के कन्होली थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 किलोग्राम मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने नशीला इंजेक्शन बेचने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। सुपौल जिले की एसएसबी सीमा चौकी न्योर ने स्थानीय पुलिस की मदद से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से 2 महिलाओं को नेपाली शराब और 1,08,000 भारतीय रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद होने के कारण लगातार लग रहे जाम को देखते हुए मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेता लव और कुश को सम्मानित किया। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शपथ ग्रहण में हुए शामिल। लोक भवन ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का दिया निर्देश। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति के आधार पर मामलों का हुआ निपटारा। और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गया, औरंगाबाद और रोहतास समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
1: पश्चिम चंपारण जिले में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। बीते दिनों आई तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गई, जिससे आवागमन बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति भी देखी गई, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और कई जगह जाम की स्थिति बन गई। वहीं मौसम में आई ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को राज्य के नए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें डेयरी पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद जिले सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर तथा आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। इधर जदयू नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पिछले सप्ताह पश्चिम चंपारण से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, पार्टी के पूर्व और वर्तमान विधायक जिलाध्यक्ष कन्हैया कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दूसरे दिन बेतिया ऑडिटोरियम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की और कार्यकर्ताओं व आम लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। बेतिया के ऐतिहासिक धरोहर बड़ा रमना मैदान के सौंदर्यीकरण और संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सक्रिय पहल शुरू कर दी है। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने बताया कि लगभग 2,26,56,892 रुपए की लागत से मैदान का समतलीकरण कर खाली स्थानों पर मुलायम घास बिछाई जाएगी तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से इस धरोहर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग रही है। बीते दिनों जिले के लोगों को बड़ी सौगात मिली। अब जिले वासियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यह सुविधा अब जिले में ही उपलब्ध होगी। पिछले दिनों वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने रामनगर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बगहा और रामनगर के विधायक सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पहले दिन कुल 35 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए। सांसद सुनील कुमार ने कहा कि अब वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए बेतिया या पटना नहीं जाना पड़ेगा। वहीं विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने बताया कि इस केंद्र में प्रतिदिन 45 पासपोर्ट और 5 PCC अपॉइंटमेंट स्लॉट उपलब्ध रहेंगे। जिले में निजी विद्यालयों की कार्य प्रणाली को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी तरुण ज्योत सिंह ने निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक शुल्क वसूली, अनावश्यक फीस और विशेष दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के लौरिया प्रखंड बाल विकास कार्यालय परिसर में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2026 का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी ब्रजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि यह पखवाड़ा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में मानसिक और शारीरिक विकास को मजबूत करना तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जिले के होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर सुरेश प्रसाद को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित विश्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि की जानकारी सामने आते ही पश्चिम चंपारण सहित पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। पश्चिम चंपारण जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा।

आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में नोड़ी फिल्म का ये गाना। गीतकार जानेसर अख्तर, संगीतकार खय्याम।

अलका याज्ञिक को अभी आप सुन रही थी फिल्म तमन्ना में। गीतकार थे राहत इंदौरी, संगीतकार अनु मलिक। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते ही श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आप तक पहुंचा दें। श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है पुनर्प्रसारित हमारा पर्यावरण कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम के इस नए अंक के साथ मैं विपिन कुमार राय। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है जैव विविधता और वनों की सुरक्षा। साथ ही सुनवाएंगे डॉक्टर कालिदास झा की वार्ता हमारे पादप और पारितंत्र पर। सबसे पहले चर्चा जैव विविधता पर। जैव विविधता का क्षरण एक नकारा नहीं जाने वाला सत्य है। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि वनस्पतियों की हर 8 में से एक प्रजाति विलुप्तता के खतरे से जूझ रही है। जैव विविधता के लिए पैदा हुए ज्यादातर जोखिम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या जो बेलगाम दर से बढ़ रही है के कारण है। दुनिया की जनसंख्या इस समय 6 अरब से अधिक

जिसके सन 2050 तक 10 अरब तक पहुंचने के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। तेजी से बढ़ती इस जनसंख्या से दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्रों और प्रजातियों पर अतिरिक्त दबाव तो पड़ना ही है। सन 1000 से 2000 के मध्य हुए प्रजातीय विलुप्तताओं में से अधिकांश मानवीय गतिविधियों के चलते प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण हुई हैं। जैव विविधता को नष्ट करने में मानवीय गतिविधियों से संबंधित कारकों में अधिक जनसंख्या, वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग है। ये सभी कारक अधिक जनसंख्या से जुड़े हुए हैं, जो जैव विविधता के ऊपर संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं। जब किसी फसल को उगाने के लिए वनों को काटा जाता है तो भी जैव विविधता को दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार किसी प्रजाति को मारकर उसे विलुप्त कर दिया जाता है। पैसेंजर कबूतर, जो धरती पर एक समय बहुतायत में पाए जाते थे, मानवीय निर्दयता के कारण विलुप्त हो गए। मानव द्वारा विदेशी प्रजातियों को प्रवेश कराना जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक विदेशी प्रजाति वह प्रजाति है जो किसी क्षेत्र विशेष की मूल निवासी नहीं होती, यह बाहर से प्रवेश कराई जाती है। कभी कभी ऐसी बाहरी प्रजाति नए पारिस्थितिकी तंत्र में आश्चर्यजनक रूप से तालमेल बिठा लेती है। वे इतनी अच्छी तरह से प्रजनन करते हैं कि क्षेत्र की मूल प्रजातियों के लिए उपलब्ध स्रोतों की उपलब्धता अत्यंत घट जाती है। इसके अलावा विदेशी प्रजाति शिकारी, परजीवी या फिर प्रजातियों से कहीं अधिक आक्रामक हो सकती है। हवाई द्वीप में इस प्रकार की एक प्रजाति मैना है। इसे गन्ने के कीटों के नियंत्रण के लिए प्रवेश कराया गया था, परंतु यह लैंटाना कैमरा नामक खरपतवार के बीजों के प्रसारक का काम करने लगी। गुबाम में मूल रूप में पाई जाने वाली जंगली चिड़ियाँ की 13 प्रजातियों में अब सिर्फ 3 जीवित हैं और छिपकली की 12 मूल प्रजातियों में से अब मात्र 3 ही जीवित हैं। ये सांप खंभों पर चढ़कर बिजली के तारों को फंसा देते हैं और इलाका अंधेरे में डूब जाता है। गुबाम की तरह विदेशी प्रजातियों को सामान्यतया ऐसे क्षेत्रों में बसाया जाता है जहां उनके प्राकृतिक दुश्मन नहीं हों। देसी जीवों में भी बहुधा इतना अनुकूलन नहीं पाया जाता है जिससे उन्हें सुरक्षा मिल सके। वैसे इस प्रकार का अनुकूलन विकास का ही अंग है और इसे विकसित होने में काफ़ी समय लगता है। किसी अन्य प्रजाति के इनके प्रसार को रोकने और निर्धारित नहीं कर पाने पर विदेशी प्रजाति इस स्तर तक फल फूल जाती है कि वे प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ देती हैं। पिछले कुछ समय से पर्यटन ने बहुत सी समस्याओं को उत्पन्न किया है, क्योंकि पर्यटकों की अत्यधिक संख्या कई बार किसी क्षेत्र विशेष पर भारी पड़ जाती है। इसलिए हम पारिस्थितिकी मित्र पर्यटन या इको टूरिज्म की बात करते हैं तो संभावित पर्यावरणीय प्रभाव कम पड़ता है और मूल निवासियों को टिके रहने में सहायता मिलती है। हालांकि जिम्मेदार पर्यटन भी पारिस्थितिकी संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। गैलेपागोस द्वीपों की कहानी इसका एक उदाहरण है। गैलेपागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का ही एक भाग है। यह 13 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीपों, 6 छोटे द्वीपों और 107 चट्टानी द्वीपिकाओं से मिलकर बना है। इसका सबसे पहला द्वीप 50 लाख से 1 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुआ था। सबसे युवा द्वीप इसाबेल और फर्नेंडीना अभी भी निर्माण के दौर में है और इनमें आखिरी ज्वालामुखी उद्गार सन 2005 में हुआ था। ये द्वीप अपनी प्रजातियों की बहुत बड़ी संख्या के लिए प्रसिद्ध हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपने अध्ययन यहीं पर किए और प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। पर्यटन से न सिर्फ द्वीपों पर मौजूद साधनों को खामियाजा भुगतना पड़ा, बल्कि पर्यटकों की बहुत बड़ी संख्या वन्य जीवन को भी विक्षुब्ध कर सकती है। परेशानी को और बढ़ाने के लिए नई प्रजातियों या नई बीमारियों का प्रवेश स्थिति को बिगाड़ सकता है। पर्यटन अब इन द्वीपों पर जैव विविधता के लिए एक गंभीर समस्या का रूप धारण करता जा रहा है। आमतौर पर यह हर कोई नहीं जानता कि किसी विशिष्ट प्रजाति की समृद्ध विविधता को दूसरी प्रजातियों से प्राकृतिक अवरोध सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप नहीं होता तो ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट प्राणी जीवन एवं वनस्पति जीवन का वास्तव में आज तक बचा रह पाना मुश्किल था। हालांकि जलपोत एवं वायुयानों की मदद से

बहुत दूर स्थित प्राणी प्रजातियों को नज़दीक पहुंचा दिया गया है, जो जैव विविधता के लिए अत्यंत घातक हो सकता है। यदि हम विभिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों की प्रजातियों की एक जगह रहने की गतिविधि को चालू रखें तो यह संभव है कि आक्रामक महाप्रजातियां जल्द ही दुनिया पर राज करने लगें और बाकी सब पाठ्य पुस्तकों में चित्रों के रूप में ही बच पाएगा। वैज्ञानिकों ने इंगित किया है कि जैव विविधता सिर्फ एक ही प्रजाति के अस्तित्व के लिए गायब होती जा रही है और वह प्रजाति इंसान है। इसके पीछे दिया जाने वाला तर्क यह है कि हालांकि विलुप्त हो रही प्रजातियां इंसानी भोजन के रूप में प्रयोग की जाने वाली प्रजातियां नहीं हैं, परंतु उनका बायोमास यानी जैव संहति मानव भोजन में परिवर्तित होता जा रहा है। जब उनके प्राकृतिक आवासों को खेती की जमीन के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी के बायोमास का 40% से ज़्यादा हिस्सा मात्र कुछ ही प्रजातियों से जुड़ा है, जिसमें मानवीय पालतू पशु और फसलें सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि चूंकि प्रजातीय प्रचुरता के घटने से पारिस्थितिकी तंत्रों की टिकाऊ क्षमता घटने लगती है, इसलिए विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सारे विश्व के साथ भारत भी जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए एक साथ काम कर रहा है। भारत ने वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीवन प्रबंधन से संबंधित कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया है। इनमें से कुछ जैव विविधता सम्मेलन वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्रायः प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आधारित सम्मेलन रहे हैं। भारत दुनिया के 17 विशाल विविधतापूर्ण देशों में से एक है, लेकिन कई पौधों और जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। गंभीर खतरों और अन्य विलुप्त प्रायः पौधों तथा पशु प्रजातियों की रक्षा करने के लिए भारत ने भी कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा 1973 में बाघ परियोजना को शुरू किया गया था और यह इस तरह की पहली पहल थी जिसका उद्देश्य मुख्य प्रजातियों और उसके सभी निवास स्थानों की रक्षा करना था। मगरमच्छ पर भी आज खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनकी त्वचा का प्रयोग चमड़े का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसी कारण भारत ने 1960 के दशक में मगरमच्छ के विलुप्त होने की चिंता व्यक्त की थी। प्रजनन केंद्रों का निर्माण कर उनके प्राकृतिक निवास में मगरमच्छों की शेष आबादी की रक्षा करने के उद्देश्य से 1975 में मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। हाथी परियोजना के द्वारा उत्तर और पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में हाथियों के प्राकृतिक निवास स्थान एवं इसकी आबादी की लंबी अवधि के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। यह प्रायः 12 राज्यों में लागू की गई है। उड़ीसा तट के गहिरमाथा और अन्य दो स्थानों पर प्रतिवर्ष दिसंबर और अप्रैल के बीच बड़े पैमाने पर निवास करने के लिए हजारों की संख्या में ओलिव रीडेल कछुए एकत्र होते हैं। यह दुनिया में ओलिव रीडेल कछुओं के लिए निवास स्थान बना हुआ है। यह अनुमान लगाया गया था कि हिरमाथा समुद्री तट पर लगभग 2,00,000 कछुए रहते हैं। समुद्री जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि वास्तव में प्रति हजार अंडों में से केवल एक ही परिपक्व हो पाता है। इनके निवास स्थानों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। 1974 में इस समुद्र तट की खोज के बाद इसे एक अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसके शिकार पर रोक लगाया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी दिल्ली और उड़ीसा की वन्य जीव सोसाइटी द्वारा ऑपरेशन कच्छप संचालित किया जा रहा है। दिल्ली चिड़ियाघर में भी सफलतापूर्वक दुर्लभ मणिपुर बारा सिंघी हिरण का प्रजनन हुआ है। पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण भारतीय अधिनियम है, जिसके द्वारा अनेक वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। मछली के संरक्षण के लिए मत्स्य अधिनियम 1897 है। वन्य संरक्षण हेतु 1927 का अधिनियम है। खनन और खनिज संरक्षण हेतु 1957 में अधिनियम लाया गया था। जानवर क्रूरता निवारण एवं संरक्षण के अधिनियम को 1960 में लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए एक अधिनियम 1972 में भी लाया गया। जल प्रदूषण निवारण एवं संरक्षण के लिए 1974 में एक अधिनियम लागू किया गया। वन्य संरक्षण के लिए अधिनियम 1980 में भी लागू किया गया। वायुमंडल प्रदूषण
एवं संरक्षण

0: संरक्षण अधिनियम 1981 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम 1986 में भी लागू किए गए। जैव विविधता अधिनियम 2002 में भी लागू किया गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में लागू किया गया, जिसके द्वारा इनके संरक्षण का ध्यान रखा गया है।
1: श्रोताओं, अभी आपने जैव विविधता पर यह चर्चा सुनी। श्रोताओं, जैव विविधता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने वनों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दें। जैव विविधता के संरक्षण के लिए जंगलों की सुरक्षा भी आवश्यक है। वैश्विक भूमि क्षेत्र का 33% वन आच्छादित होना अनिवार्य है। अधिकांश स्थलीय पौधे और जानवरों की प्रजातियों का निवास वन क्षेत्र ही होते हैं। इसमें 80% उभयचर प्रजातियां, 75% पक्षी प्रजातियां और 68% स्तनपायी प्रजातियां शामिल हैं। मैनग्रोव वन हमारी समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करते हैं, जो मछली और शंख की कई प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल और नर्सरी प्रदान करते हैं। जंगलों के भीतर रहने वाले समुदाय भोजन, चारा, आश्रय, ऊर्जा, चिकित्सा और आय सृजन के लिए वन संसाधनों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर भी वनों की कटाई और वन क्षरण से वन और उनकी जैव विविधता खतरे में है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए वनों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवश्यकता है। दुनिया की जैव विविधता का संरक्षण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि हम दुनिया के जंगलों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वनों की कटाई और वनों का क्षरण खतरनाक दर पर जारी है, जो जैव विविधता के क्षरण को और गंभीर तथा दयनीय स्थिति में पहुँचा रहा है। वनों की सुरक्षा से ही जैव विविधता संभव है।
0: वनों की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। प्रकृति के दोहन से दूरगामी परिणाम मानव के लिए अच्छे नहीं होते हैं। यही वजह है कि आज हम प्रकृति का असंतुलन होने पर प्रकृति के प्रकोप जैसी आपदाओं को झेल रहे हैं। मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की रक्षा के लिए हम अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति के दोहन से प्रकृति अपने परिवेश को बदलती नजर आ रही है। हमें पर्यावरण दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि पर्यावरण दूषित होने से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जो मानव के जीवन के लिए घातक हैं। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार भी हैं। वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पूर्णतया सहायक होते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषियों, मुनियों व संतों के लिए वन तपस्या का प्रमुख स्थान रहा था। वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का भंडार होता है, जो विभिन्न प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है। पीपल के वृक्ष हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व का है। साथ ही साथ यह अत्यंत गुणकारी भी है, क्योंकि यह प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देकर मानव का कल्याण करता है। वैसे तो सभी वृक्ष दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, परंतु पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन प्रदान करने का अनुपात अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त नीम, बबूल, तुलसी, आंवला व समी आदि वृक्षों का औषधि के रूप में विशेष महत्व है। वन मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। आज वनों के अधिकाधिक कटाव से अनेक महत्वपूर्ण जंतु लुप्त हो गए हैं तथा अनेक जंतुओं के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वन ऋतुचक्र एवं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं तथा उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी के जल को अवशोषित करते हैं, जो पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। परंतु मनुष्य की स्वार्थ लोलुपता एवं असंतोष की प्रवृत्ति से दिन प्रतिदिन वनों की तेजी से कटाई हो रही है। यही कारण है कि भूमि का कटाव बढ़ रहा है, जिससे जलाशय दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। पानी की इस निरंतर कमी

0: से जलीय जंतुओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। हमें हमारे पादप और पारितंत्रों की रक्षा के लिए समुचित उपाय करने की आवश्यकता है। श्रोताओं, आइए इसी संदर्भ में आज हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर कालिदास झा की वार्ता हमारे पादप और पारितंत्र।
1: पारितंत्र एक ऐसी इकाई है जिसके विभिन्न घटक सम्मिलित रूप से कुछ निवेश प्राप्त करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और उत्पाद प्रदान करने में कोई प्राविधि दर्शाते हैं, जिसके फलस्वरूप उस इकाई को कुल मिलाकर एक कार्यात्मक स्थिरता प्राप्त होती है। पारितंत्र के दो पक्ष हैं, संरचना और कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक परिवेश एवं जैविक विकास सहप्रभावी और परस्पर व्यापी है। इस दृष्टि से कुछ तथ्यों का विशेष महत्व है, जैसे सकल जैव जगत और उसका भौतिक परिवेश एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके किस

तंत्र के दो पक्ष हैं, संरचना और कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक परिवेश एवं जैविक विकास सहप्रभावी और परस्पर व्यापी है। इस दृष्टि से कुछ तथ्यों का विशेष महत्व है, जैसे सकल जैव जगत और उसका भौतिक परिवेश एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके किसी एक खंड में परिवर्तन होने पर उसके सारे घटक भी प्रभावित होते हैं। कोई जीव परिवेश की सहनशीलता की सीमा के भीतर ही जीवित रहकर विकसित हो सकता है। जैव जगत का आकार परिवेश की वहन क्षमता पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र में जीवों की उपलब्धता तथा भोजन श्रृंखला से प्राप्त ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों की चक्रीय उपलब्धि पर निर्भर करता है। यह दोनों ही प्रक्रिया किसी भी तंत्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है। प्रकृति हमेशा जैव जगत में विविधता रूपी अथवा बहुमुखी विकास का प्रयास करती है। मानव एक ऐसा जीव है जिसने भूतल के इको तंत्र की भोजन श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर रखा है। मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु भौतिक एवं जैविक दोनों ही संसाधनों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षतः निर्भर करता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति के समय वह प्रकृति द्वारा स्थापित विशिष्ट ढांचे एवं संतुलन दोनों को ही प्रभावित करता है। इससे प्राकृतिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है एवं परिवेश में प्रदूषण वृद्धि होने से प्राकृतिक संतुलन विकृत होने लगता है एवं इसका संसाधन उपलब्धता पर विशेष प्रतिकूल एवं अन्य तत्वों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के पादप का स्थान आहार श्रृंखला में ठीक वही है जो ऊर्जा के स्रोत में सूरज का, जीवों के विकास में जल का, जीवन के संचार में वायु का है। धरातल पर पादप किसी भी रूप में, चाहे जलीय हो या जमीनी, वे फंगस, शैवाल, लीचेन, काई, मशरूम, घास, बेल या लताओं, छोटे बड़े वृक्षों, पौधों या झाड़ियों के रूप में पाए जाते हों, सभी हमारे जीवन और भौतिक विकास के पूरक और आधारभूत संसाधन हैं। पादप जलवायु के प्रति सर्वाधिक सेंसिटिव होते हैं। बाजारों में जहां वन उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, उपयोगी किस्म के पादपों का रोपण आवश्यक है, अन्यथा मरुस्थलों का विस्तार, वर्षा, भौम जल स्तर और पेय जलापूर्ति कभी बाधित हो सकती है। पादप किसी अन्य संसाधनों की तुलना में सबसे अधिक प्रदेशों में, सर्वाधिक समुदायों में, सर्वाधिक विविधता और जटिल रूपों में पाया जाता है। पादप हमारे पारितंत्र के महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग हैं। पादप प्रत्यक्ष तौर पर जैव मंडल के विकास और इसकी विविधता से संबंध होने के साथ साथ आर्थिक विकास और समृद्धि, आजीविका, निर्वहन, ईंधन आपूर्ति के साथ व्यापक तौर पर सतत विकास की रूपरेखा तय करते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम करने में सहायक होते हैं और ऑक्सीजन का व्यापक तौर पर उत्सर्जन कर वायुमंडल में इसकी उपस्थिति स्थिर रखते हैं। साधारण तौर पर एक एकड़ में फैले वयस्क पादप पेड़ एक कार द्वारा 26,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान उत्सर्जित CO2 के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पादप वातावरण में दुर्गंध कम करता है और प्रदूषण फैलाने वाली गैसें यथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन परतों के हानिकारक गैसों को अवशोषित कर पत्तों और छालों पर ऐसे पदार्थ पैदा करती है जो ऐसे गैसों को अवशोषित कर सके। प्रति एकड़ वयस्क वृक्ष सालों भर 18 जनों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जहां पादप का विस्तार कम या नहीं होता है, तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। पादप वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ते हुए 10 डिग्री फारेनहाइट तक तापमान को कम करने में सक्षम होते हैं। पादप गर्मी के दिनों में वायुमंडलीय तापमान में कमी कर ऊर्जा की मांग में 50% तक की कमी कर देते हैं। इस प्रकार ये ऊर्जा की खपत को कम करने में सहायक होते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति को कम करने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। पादप जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होते हैं। पादप जल प्रवाह वेग को कम करने के साथ साथ भूमिगत जल स्तर को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। एक नया वृक्ष प्रति सप्ताह 15 गैलन पानी ग्रहण करता है।
बदले में वायुमंडल में नमी बनाए

रखने के साथ वाष्पन की गति कम कर भूमि की नमी देर तक बनाए रखता है। पादप भूमि क्षरण और अपरदन के प्रभाव को नियंत्रित करता है और भूमि की उर्वरता को कायम रखता है। पादप धरातल पर अल्ट्रावायलेट बीटा के प्रभाव को 50% तक कम कर हमारे त्वचा के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। पादप मनुष्य के साथ पक्षियों, वन्य जीव जंतुओं के लिए आहार उपलब्ध कराता है। पादप मानसिक बल, कार्यिक एकाग्रता प्रदान करने के अलावे स्वस्थ जीवन प्रदान करने के साथ उपचार भी प्रदान करता है। प्रायः पाया गया है कि पादप वाले प्रदेश में हीलिंग शक्ति अधिक होती है। विभिन्न पादप मौसम और जलवायु के सचेतक होते हैं। देखा गया है कि पादप विहीन क्षेत्रों में हिंसा की भावना अधिक होती है। पादप आर्थिक अवसरों का निर्माण करते हैं। रोजगार, व्यापार, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पादप आधारित संसाधन के रूप में स्थित होते हैं। पादप की छत्र छाया में असंख्य जीव जंतु और पादप पक्षी, बेल और झाड़ी एक साथ पलते और बढ़ते हैं। पादप धूल ग्रहण करते हैं, बदले में अपने लिए लोगों का सहज आकर्षण भी पैदा करते हैं। विभिन्न उपयोग के लिए पादप लकड़ी, पत्तियां, छाल, फल, फूल, बीज, औषधि और अन्य आधारित वन उत्पादों को प्रदान करते हैं। पादप की उपस्थिति से भूमि के मूल्य में 10-15% तक की बढ़ोतरी हो जाती है। पादप व्यापारिक आवाजाही में वृद्धि के साथ धीमी प्रवाह के सचेतक होते हैं। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन के कारण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वन अनुसंधान परिषद देहरादून के अनुसार करीब 700 से अधिक वनस्पतियों एवं प्राणियों की प्रजाति संकटापन स्थिति में है। लगभग 10% पादप की जातियां विलुप्त होने को है। पूरे बिहार राज्य में देश के कुल वन क्षेत्र का मात्र 0.84% भूभाग है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.87% है। यहाँ ऐसा कुछ भी वन्य क्षेत्र नहीं है जिसके लिए किसी गहन उपयोग की बात की जाए। विगत कुछ वर्षों में राज्य के वन क्षेत्रों में 0.17% भूमि की कमी आई है। कृषि योग्य वन विहीन भूमि बढ़कर 79,442 हेक्टेयर हो गया है। इसके आसपास प्रति हेक्टेयर पेड़ों की संख्या 13.8 के करीब है। अतः बिहार राज्य जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय दृष्टि से एक अति असंवेदनशील राज्य है, जिसका अधिकांश भाग नदी घाटियों के रूप में स्थित है। यहाँ के अधिकतर क्षेत्रों में भूमि और मिट्टी नदी निर्मित तथा भू कटाव से प्रभावित हैं। जनसंख्या तथा पशुओं के बढ़ते जैविक दबाव, प्राकृतिक संसाधनों यथा मृदा, जल एवं वनस्पति के अवैज्ञानिक दोहन, त्रुटिपूर्ण भूमि उपयोग विधि अपनाने, उपयुक्त प्रबंध तकनीकी का अभाव तथा सामूहिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाली पारंपरिक संस्थाओं के विघटन के कारण हमारी जीवनदायिनी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों का ह्रास हुआ है। इसका सर्वाधिक प्रभाव यहाँ के पादप समूह पर हुआ है। हरित क्षेत्र सिमट गए हैं और जैविक विविधता में भारी कमी आई है। फलस्वरूप समस्त पारिस्थितिकीय तंत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गरीबी और पारिस्थितिक कठिनाइयों के कारण भारी संख्या में लोगों का पलायन दूसरे राज्यों की ओर हुआ है। अतः इस राज्य के वैज्ञानिक नियोजन तथा समेकित प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जल की कमी, मिट्टी की उर्वरता में ह्रास, बाढ़ की बारंबारता और इसकी विभीषिका, उत्पादन में कमी, भूमि अपरदन, लाखों वनस्पति जीव जंतुओं की प्रजाति समुदायों का विनाश, वन्य उत्पादों का अभाव या कमी और पारिस्थितिकीय असंतुलन के दुष्प्रभावों को लोगों ने करीब से देखा, परखा और भोगा भी है और पारिस्थितिकीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्रयत्नशील भी रहे हैं। फिर भी आने वाले समय में जनसंख्या में अपार वृद्धि के कारण समस्या के और भी विकट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अतः इस दिशा में कुछ निर्णायक कठोर कदम उठाना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके हल का पहला पाठ पादप से आरंभ होकर पादप पर ही समाप्त होता है, अर्थात वन क्षेत्र।

0: क्षेत्रों का विस्तार, संरक्षण, संवर्धन।
1: हमारे पादप और पारितंत्र। श्रोताओं, अभी आपने डॉक्टर कालिदास झा की यह वार्ता सुनी। इसी के साथ हमारा पर्यावरण कार्यक्रम के इस अंक से प्रस्तुत सहयोगी विनीत कुमार ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ मुझे विपिन कुमार राय को अब दे इजाजत। अगले अंक में आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पुनर्प्रसारित हमारा पर्यावरण कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, माँ को सृष्टि का आधार ही नहीं ईश्वर का वरदान भी कहा गया है। माँ एवं संतान के पारस्परिक संबंध और दायित्व, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पुष्पम नारायण। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481, मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 10 मई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत

0: अधि शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ

0: महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण

0: को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमरीका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमरीका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen, and several other

0: recent American military actions, accusing Washington of undermining diplomatic efforts through escalation. The Indian Meteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over Kerala, Lakshadweep, South Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued a yellow alert for heavy rainfall in 7 districts of Kerala till tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the coasts today due to rough weather conditions. The Wrestling Federation of India, WFI, today issued a show cause notice to grappler Vinesh Phogat, accusing her of indiscipline and anti-doping rule violations. In the 15-page notice, the WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory 6-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The federation has sought her explanation on 4 broad charges, including her disqualification from the 2024 Paris Olympics. She has been given 14 days to respond to the notice. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. In IPL cricket, Gujarat's Titans were 221 for 4 in 19.2 overs against hosts Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India, Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शगुफ्ता यास्मीन। शुभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसीके, IUML और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर RN रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा 5 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्नि मित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार

0: वाली रियासतों के वुजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इकतदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद न बनना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल कवयित्री कड़गम TVK पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामनिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: TVK पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था, क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने TVK पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इतिहास से अलीहदा होकर कांग्रेस ने TVK पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असम्बली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असम्बली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और IUML दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान, जबकि CPI, CPIM, VCK और IUML के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी 2 रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है।

और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वें मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इनफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुज़श्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

और फिर सखाराम बाइंडर। 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया

घासीराम कोतवाल। ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं? उनकी चीजें, अपनी चीजें आप उनके लिए बदलिए, लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी, उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करी, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज़ इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था तो नहीं। बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए, अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए,

0: वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती।

0: है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जहां सात समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR,
0: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
2: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे दो तीन वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
0: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
3: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम एक जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
4: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा

0: अपना शहर है और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं, भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के दो टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
1: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
2: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
2: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
4: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
5: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9-10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते

0: सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
1: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं, पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पे लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए। हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में, सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
3: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
6: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान

0: बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
5: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजुमदार। राजकुमार मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, रेनाउंड फॉर हिज डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड एक्सेप्शनल टोनल क्वालिटी। His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was राग जनसम्मोहिनी। Continuing his recital, he now presents राग आभोगी। मध्य लय एंड द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल।

अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्न वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।